एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। हमारा आज का ये प्रसारण अब आरंभ होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र

0: मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। दिन की बेहतरीन शुरुआत करने से पहले आइए साथियों वंदन अभिनंदन करें उस माटी का जिसका कण कण है पावन। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए देश वंदना।
2: उत्तर में हिमालय जिस देश के शीर्ष पर सुशोभित है, दक्षिण में अथाह सागर जिस देश के चरण पखारता है, अनेकता में एकता जिस देश की विशेषता है, वो देश भारत सारे जग में सबसे न्यारा है और हमको सबसे प्यारा है।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। श्रोताओं, मन की आस्था को हरी रंग मिले, हर सांस ही को उमंग मिले, आए जो अंगना पालनहार, जीवन में जैसे हर दिन सावन की।

सुचित्रा बारवे की आवाज में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। श्रोताओं, मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सिर झुकाने से ईश्वर नहीं मिला करते। लीजिए सुनिए अब हरिओम शरण की आवाज में कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, जहाँ उम्मीद जिंदा है वहीं आस्था भी कायम है। आराधना कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राजेश डेविड की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

साथियों स्वयं के भीतर विराजमान ईश्वर को वही देख पाता है जो खुद पर पूर्ण विश्वास रखता है। आराधना कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये स्तुति वंदना।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना। और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आराधना कार्यक्रम का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह

0: के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अदरक मा रोग नियंत्रण के विषय में जानकारी। वाचन स्वर रुपेश कंवर का है, लीजिए सुनिए।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। कोनो भी फसल अपना थन संगवारी हो तो मैं कई प्रकार के रोग व्याधि कीट लगे के संभावना घलो बने रहते हैं। ओकर माध्यम से हमारे जो फसल है सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना घलो रहते हैं। बेरा रहत अगर हमन कीट की चिन्हारी रोग की चिन्हारी कर लेन और निदान पा गए तो फसल में हमन अच्छे से 40 से 50% तक बचत हमन कर सकत हन। किसान भाई, आज खेती की बात में आपन का गोड़ बात करबो, अदरक के रोग नियंत्रण कैसे करी। संगवारी हो, अदरक में सबसे ज्यादा 3 प्रकार के रोग आते जो हमार अदरक की खेती सबसे ज्यादा नुकसान करे के संभावना करते। और खास बात के संगवारी हो कि बरसात के बेरा में ये रोग आए के ज्यादा संभावना रहते, जिससे कि कन सड़न नरम सड़न सबसे खतरनाक रोग है। पत्ता पीरो होके मुरझा जाते और पौधा आसानी से उखड़ घलो जाते। कांदा ह करिया हो जाते और गीला होके बदबू आने लगते। यह है एकर प्रमुख चिन्हारी है। कारण की बात करी संगवारी हो तो बरसात के बेरा में जल भराव ज्यादा होते, ज्यादा नमी और खराब निकासी। एक खातिर आए दिन अपन यही कथन कि कोनो प्रकार के फसल अपनावत हन तो सबसे पहले हमारा भूइया के तैयारी और भूइया के चयन करना बहुत ही आवश्यकता होते। अदरक की खेती करत हन संगवारी हो तो ऐसे भूइया के हमल चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी के ठहराव और निकासी आसानी रूप से हो सके। जहाँ पानी ठहराव हुई वहाँ अदरक की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना घलो बने रहते हैं। नियंत्रण पर बात करी किसान भाइयों, खेत की तैयारी करत घानी हमारे क्वारी ला अच्छे से बनाना चाहिए, नाली निकालना चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल सके। बीजा उपचार करना बहुत ही आवश्यकता होते। बुआई के पहले हमला कार्बोडिजिम 2 ग्राम, मैकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर 30 मिनट तक पानी में डुबा देना चाहिए। एक संगे संग जैविक पद्धति की बात करी संगवाई, टाइकोडर्मा 10 ग्राम किलो बीज, 5 ग्राम किलो बीज, जैसे रोग दिखत वैसे मैकोजेब 2.5 लीटर घोल बना के जो जड़ हवा वहाँ 500 ml डाल देवा। संगे संग 5 दिन बाद ओला दोबारा अपन छिड़काव घलो कर सकता। पत्ती धब्बा, पत्ती सुलझा, एक लक्षण की बात करी किसान भाइयों, पत्ता छोटे छोटे भूरा हो जाते और धब्बा दिखाई दे लगते। बाद में पत्ता सुखा जाते और धीरे धीरे करके पत्ता गिर जाते। एक कारण जो अदरक के खेती में पैदावार बहुत ही कम हो जाते। एक नियंत्रण के गोड़ बात करी किसान भाइयों, पहली फुहारा रोग दिखा थे वो बेरा हमला मैकोजेब 2.5 ग्राम लीटर पानी में अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। दूसरी फुहारा हमला 10 से 15 दिन बाद कार्बोडिजिम 1 ग्राम लीटर पानी में मिला के अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। जैविक पद्धति की बात करी किसान भाइयों, नीम तेल प्रति लीटर हर 10 दिन में हमला अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। एक बात क्या विशेष करके मतलब चेत करना चाहिए संगवारी हो, जे बेरा अदरक के खेती करा था तो प्रयास रहे कि मैं ज्यादा घन में नहीं लगाना चाहिए बल्कि थोड़ा धुरिया धुरिया में अगर लगावा था तो एकरो से कोनो प्रकार के रोग व्याधि कीट लगे के संभावना बहुत ही कम रहते। जीवाणु उकठा, एक लक्षण की बात करें किसान भाई, एक दिन में पौधा पूरा मुरझा जाते और तना हाँ काटे लगते, संगे संग सफेद चिपचिपा जो पदार्थ जैसे दिखाई देते, एकर ओकर प्रमुख लक्षण है। नियंत्रण के बात करी किसान भाइयों, रोग वाला पौधा ला सबसे पहले हमें उखाड़ के धुरिया फेंक देना चाहिए या तो जला देना चाहिए। संगे संग लगातार अगर एक ही फसल एकेटक भूइया में अपनावा था तो एक प्रकार के रोग लगे के संभावना ज्यादा रहते। एक खातिर आपन एक भूइया में फसल चक्र के माध्यम से आनी बानी की खेती सहन करके दोहरा आमदनी कमा सका था। जिसे अभी हम अदरक लगाए हैं तो अगले साल वहाँ दूसरा फसल लेके हम अच्छे से आमदनी कमा सकते। जौन बेरा हमन अदरक की खेती करा था वो बेरा ये बात की चेत करना बहुत ही आवश्यकता होते कि जौन बीजा लगाए वो स्वस्थ हवे कि नहीं हो, या तो हमारे प्रमाणित बीजा हवा है वही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र से जौन बीजा मिला थे अदरक के वो उपयोग करी, उद्यान विभाग के मिला थे ओकर माध्यम से उपयोग करी। एक प्रकार से अगर हमन बुआई के पहले चेत करा था तो कहीं ना कहीं हमन प्रमुख रूप से जो अदरक के खेती में रोग हुआ थे ओकर से नियंत्रण पा सकत। प्रमुख कीट और नियंत्रण की बात करी संगवारी हूँ, कीड़ा तना के अंदर घुस जाते और तना ला पूरा सुखा जाते, एकर माध्यम से पौधा सबसे ज्यादा नुकसान होने के संभावना घलो रहते। सूत्र कृमि, जड़ की गांठ बुआई के पहले मतलब नीम खल्ली 200 किलो प्रति एकड़ पाछू छिड़काव करते तो कहीं न कहीं जो अदरक की खेती में जो रोग व्याधि आते ओकर से हमन निदान पा सकत। राम राम, जय जोहार।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अदरक मां रोग नियंत्रण के विषय में जा

जानकारी। वाचन स्वर रुपेश कंवर का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आवाजें हैं जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न हैं, उनका चित्त उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राजतिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में श्री रामचरितमानस गान। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है छोटी छोटी बातें और जीवन में मिठास। लीजिए सुनिए।

कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान रखकर वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को पर्याप्त मीठा बनाया जा सकता है, पर यदि उन पर अमल न किया जाए तो आदमी उस मिठास का दुश्मन बन जाता है। दूसरे के घर या बगीचे का बाहरी गेट खुला छोड़कर चल देते समय व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि भटकती हुई गायें और भैंसें उसकी इस भूल से अपना गलत फायदा उठाने का इंतजार करती रहती हैं। कुछ लोगों में यह सोचने की क्षमता नहीं होती कि खिड़कियों और दरवाजों के किवाड़ों में स्टॉपर क्यों लगाए जाते हैं। किवाड़ भड़भड़ाने और कांच टूट जाने पर वे सीधे आंधी को दोष देते हैं। शौचालय में निवृत्त होने के बाद पानी न डालने वाला आदमी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता है कि उसके बाद शौचालय का इस्तेमाल करने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं घुस पाती कि जब वे लिफाफा चिपका रहे होते हैं तो कभी कभी उसके साथ उसमें रखी हुई चिट्ठी भी चिपके जा रही होती है। विभिन्न अवसरों पर लाउड स्पीकरों के माध्यम से धुआंधार खुशियां मनाने वाले ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कुछ लोग उतने अधिक हल्ले से परेशान भी हो रहे होते हैं। टिकट खरीदते समय क्यू में तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति यह महसूस करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि क्यू में लगकर टिकट खरीदने से शरीफ लोगों को सुविधा रहती है। किसी किसी के घर और ऑफिस में हर चीज कूड़े के समान पड़ी रहती है। कुछ ढूंढना है तो ढूंढे चले जा रहे हैं, वो चीज मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्हें इस साधारण सी बात को समझा पाना बहुत मुश्किल है कि हर चीज को यथा स्थान रखिए और सदा उसे उसी स्थान से तत्काल प्राप्त कीजिए। कुछ लोग अपने वाहन को आड़ा तिरछा पार्क कर देंगे और कुछ उसका मुंह दरवाजे या चौखट या सीढ़ी के ठीक बीच में सामने धंसा कर छोड़ देंगे। उन्हें अपने से बाहर निकलकर ये सोचने की फुर्सत नहीं रहती कि उससे आदमियों को चलने निकलने में भारी असुविधा हो जाती है। कुछ लोग केवल एक तरफ लिखे हुए साफ सुथरे कागज को बेदर्दी के साथ फेंक देते हैं। उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं होती कि वे इस प्रकार हर एक रुपए में से बर्बाद होते हुए हर आधे रुपए को अपने और पूरे देश के लिए बचा लिया करें। किसी को मंदिरों और सभाओं के बाहर जूते चप्पल ठीक से रखना नहीं आता। किसी को अपने गुसलखाने में से गीले कपड़ों को उठाना नहीं आता। किसी को शिक्षा संस्था में चल रही कक्षाओं के बाहर बरामदे में कायदे से चलना नहीं आता। किसी को अपने पालतू जानवरों को प्रमुख सड़कों पर घूमने से रोक कर रखना नहीं आता। किसी को घर के कूड़े कचरे को उसकी सही जगह फेंकना फेंकवाना नहीं आता। और किसी को अपनी चीजों और सामान को ऐसी जगह रखना और जमाना नहीं आता जहाँ वो खुद भी उससे आते जाते टकराया ना जाया करें। साफ सुथरी दीवारों पर फालतू बातें लिख देना, किसी भी जगह थूक देना और घर बाहर के हर कोने को पान की पीक से सड़ा देना, सड़क पर चाहे जहां केले आदि के छिलके फेंक देना, थाली में जरूरत से ज्यादा खाना परोसवा कर जूठा छोड़ देना, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों से जरा भी न डरना और खुले चाकू और कैंची जैसी चीजों को अचानक गिर पड़ने की स्थिति में कहीं रख छोड़ना अपनी नाक के आगे कुछ भी न देखने के बराबर है। कोई कोई परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक न डालकर खुद अपने उत्तर क्रमांक डाल देते हैं और अपने संभावित नुकसान के खतरे के साथ परीक्षक को परेशान कर देते हैं। कोई कोई नीचे के मकान के निवासी नल का पानी ऊपर न चढ़ने देने का खेल खेल कर ऊपर के मकान वाले का जीना मुश्किल कर डालते हैं। कोई व्यक्ति किसी को निश्चित समय देकर अपनी बात केवल लापरवाही के कारण पूरी न करने को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। कोई सज्जन आड़े वक्त

तुम्हें उनकी तत्क्षण मदद करने वाले भले आदमी का उधार चुकाने के नाम पर अपनी सारी सज्जनता दांव पर लगा देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग बात बात में कड़वा बोलना महानता मानते हैं। जीने को तो सभी जी रहे हैं, पर जीवन में मिठास लाने के लिए शायद बहुत कम लोग सच्ची कोशिश कर रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था छोटी छोटी बातें और जीवन में मिठास। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:05 पर सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। 7:30 का समय होगा सदाबहार नगमे का। 8:30 पर आप आनंद लेंगे लोक मिट्टी की खुशबू में भीगे फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम माटी के स्वर का। और आज सुबह 9 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग, जिसका प्रसारण हम अपने ही स्टूडियो से करेंगे। 10 का समय होगा फरमाइशी हिंदी फिल्मों गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। 10:30 पर नए तरानों के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर। और ठीक 11 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसके अलावा आज शाम 4 संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी आज सुबह के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आइए हम आपको आज शाम के मुख्य आकर्षणों के विषय में बतला दें। आज शाम 5 सबसे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर चित्रपट संगीत और संध्या 6:20 और संध्या 7 आप आनंद लेंगे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बच्चों को सुनाएं कहानी, इस विषय पर सजीव चर्चा। आगे इसी कार्यक्रम में लोक संस्कृति के क्रम का आप लेंगे आनंद। प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। रात्रि 8 का समय होगा संसद समीक्षा का। और आज रात्रि 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। आज रात्रि 8:20 पर आप आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। इसके अलावा आज संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा फूल की खेती ला बढ़ावा देवा। 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब और विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी। आज की बातचीत का विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियों एवं उनके बचाव के उपाय, इस विषय पर जानकारी देंगे पशु चिकित्सा सेवा मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर RM त्रिपाठी और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे मेंगू भैया। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, सुबह के 6:55

0: नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे, शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानु से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर

0: देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह सुबह आज हफीज़ बनारसी साहब का लिखा हुआ एक बेहद मकबूल शेर याद आ रहा है कि दिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, दिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए। ज़िंदगी दर्द की तस्वीर न बनने पाए, बोलते रहिए ज़रा, हंसते हंसाते रहिए। जी हाँ मित्रों, आज ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि बोलते रहने की ये ताकत हमें दी है रेडियो ने। गुज़रे दौर को अगर आज हम पलट कर देखें तो पाएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने सूचना और भाईचारे को कायम रखने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद रेडियो ने जन जन तक साक्षरता, स्वास्थ्य और जागरूकता के साथ ही कृषि कार्य से संबंधित ज्ञान को भी विस्तार दिया है। रेडियो ने मनोरंजन की भाषा को बदला है। रेडियो ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम अपने काम में लगे रहते हुए भी इससे जुड़ सकें। रेडियो ने अपने 90 वर्षों के सफ़र में जाने कैसे कैसे मकाम तय किए हैं, जाने कितने ही खेतों, हॉस्टलों के कमरों, रसोई घरों और बैठकों में गूंजता रहा है रेडियो। रेडियो हम सफ़र है, हम नफस हैं, वो गर्दिश में हिम्मत बंधाने वाला हमारा साथी है। एक अद्भुत उपकरण, एक अद्भुत तकनीक है रेडियो, जिसने हम सबके जीवन पर अपना गहरा असर छोड़ा। प्रसारण के उस शुरुआती रूप से लेकर आज तक के इतिहास में रेडियो ने एक बेहद रोमांच से भरा सफ़र तय किया है। साथियों, 23 जुलाई 1927 को यानी आज ही के दिन भारत में रेडियो प्रसारण का आगाज़ हुआ। आज के ही दिन बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। बाद में 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया और उसके बहुत बाद में 1957 में बहुजन हिता

और बहुजन सुखाय जैसे आदर्श विचारों का ध्यान रखते हुए इसका नामकरण किया गया आकाशवाणी के रूप में। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जनसंचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति मानी जाती है। मर्फी के उस वॉल्व वाले रेडियो से लेकर आज के वर्तमान युग में रेडियो को हम अपने मोबाइल में तरह तरह के एप्लीकेशंस और लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं। रेडियो ने हमारे जीवन को बदला है। भारत में आज रेडियो आकाशवाणी के रूप में जन जन की वाणी बनकर अपने उरूस पर कायम है। इसके सिग्नेचर ट्यून भी बेहद अद्भुत और रोमांचक है। इसे सृजित किया था वॉल्टर काफमैन ने। रेडियो हमारी साझा संगिनी है। रेडियो हमारी जिंदगी, हमारी भाषा, हमारी सोच का अमिट हिस्सा है। यकीनन रेडियो के साथ जीना जीवन को तनिक और हसीन तरीन और बेहतरीन बनाने का अनुपम प्रयास है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में इस वक्त हम सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, अपने जिले की आज की यातायात संबंधी जानकारी सुनने के लिए आप अपने रेडियो सेट में सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस जनों के द्वारा शहर से लेकर गांव-गांव में भी विरोध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया गया है। इस क्रम में आज दोपहर 12 बजे शहर के नेहरू चौक, गांधी चौक, अमरैया चौक, बुधवारी बाजार में, इसी प्रकार शहर से बाहर जोंदरा चौक मजदूरी, महामाया चौक रतनपुर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रत्येक सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से आम यातायात बाधित ना हो, सड़क जाम होने से आम जन परेशान ना हो और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक वाहन किसी भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। इसके साथ ही कहीं मंद तो कहीं सामान्य गति से सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, जिले में पर्याप्त वर्षा के होते ही हमारे कृषक खेती के काम में जोर शोर से लग गए हैं। प्रायः सभी खेतों में कृषक काम करते देखे जा रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, किंतु कुछ कृषक जो ट्रैक्टर से खेतों में काम करते हैं, इनमें कुछ ट्रैक्टर चालक घर से ही ट्रैक्टर के पिछले चक्के में केज भी लगाकर गली मोहल्ले या मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर दौड़ाते हुए खेत तक जाते हैं और खेत में काम करने के बाद इसी हाल में, अर्थात दोनों तरफ केज भी लगे,

0: सड़क गली मोहल्ले में पूरी गति में ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, जो सड़कों में दो वाहनों की जगह घेर कर चलते हैं। इससे सुगम यातायात प्रभावित होती है तथा सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जब ये ट्रैक्टर खेतों में काम करने के बाद बाहर सड़कों में आते हैं, तब केज व्हील में लगे बड़े बड़े मिट्टी के लोंदे पूरी सड़क में गिरते जाते हैं। ये भी सड़क दुर्घटना के कारण है। अतः सभी कृषकों से अनुरोध है कि केज व्हील लगाकर सड़कों में ट्रैक्टर न दौड़ाएं, इसे खेत में पहुंचकर ही लगाएं तथा खेत में ही काम करने के बाद निकाल देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ट्रैफिक अपडेट को सुनने के पश्चात चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे। मित्रों, इतिहास एक दिन में नहीं बनते, लेकिन कोई दिन ऐसा भी होता है जो अपने साथ इतिहास समेट कर आ खड़ा होता है। आज़ादी के वीरों की फहरिस्त में अपने उपनाम आज़ाद से क्रांति का बिगुल फूंका था जिस देशभक्त ने, और ट्रिपल ए के नारे के साथ देश को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन को न्यौछावर किया था जिस अमर क्रांतिकारी ने, उनका आज है जन्मदिन। यानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह की त्रय जोड़ी के ओजस्वी साथी हुए चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई यानी आज ही के दिन 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर उनके अंतिम विचार के साथ हम याद कर रहे हैं। उनके अंतिम विचार हुए, मैं आजाद हूँ, आजाद था और आजाद ही रहूंगा। ऐसे ओजस्वी नारों के साथ हम उन्हें करते हैं शत शत नमन वंदन। देशभक्तों की जब बात चलती है, तब एक से बढ़कर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों की ओर बरबस ही हमारा ध्यान चला जाता है। कार्यक्रम में अब हम याद करना चाहेंगे उस विशिष्ट भारतीय नेता को जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने और सराहे जाते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में। हम उनके प्रबल कथन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जैसे विचारों के साथ स्मरण करते हैं। लोकमान्य गंगाधर तिलक के चार सिद्धांत अर्थात स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। आज उनके जन्मदिन पर उनकी देशभक्ति और बलिदान को स्मरण करते हुए हम ऐसे वीरों को अर्पित करते हैं अपने श्रद्धा सुमन। ये अमर हैं और अमर ही रहेंगे। हम नितदिन कृतज्ञ होकर वंदन कर सकें, इनके अच्छे कामों को याद कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें, तो ये बड़ी बात होगी। अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक संदेश।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आज के परिवेश में घर हो या बाहर, दफ्तर हो या क्लब, स्कूल हो या कि हो यूनिवर्सिटी, अक्सर हम देख

कि हमारी पूरी एक पीढ़ी किसी न किसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा की भेंट चढ़ चुकी है। अब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जैसे वाक्य बेमानी से लगने लगे हैं। बल्कि ये दिल मांगे मोर जैसे टैगलाइंस ने मजबूती से अपना डेरा जमा लिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है धरती पर लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक संपदाओं का क्षरण, अनगिनत विकल्पों का हमारे एक क्लिक की तर्ज पर उपलब्ध होना और बहुत हद तक हमारे जीवन में अनुशासन, विवेक और किसी भी कार्य के प्रति असुरक्षा एवं अधीरता की भावना का निहित होना। ऐसे में हमारे समाज का हर दूसरा व्यक्ति आज तनाव, मानसिक अशांति, अवसाद, अनिद्रा की चपेट में आ चुका है, जिससे निजात पाने के लिए कुछ लोग व्यसनों के आदि बन जाते हैं और कुछ लोग डिजिटली खुद को अति व्यस्त कर लेते हैं। वैसे ये दोनों ही स्थितियां घातक ही नहीं बल्कि स्वस्थ परिवार और समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से भी भयावह सिद्ध होती नजर आ रही है। ऐसे समय में मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ डिजिटल डिटॉक्स को अपनाने की सलाह देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम स्वेच्छा से कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों से थोड़ी दूरी बना लें, ताकि लगातार स्क्रीन पर चमकने वाले नोटिफिकेशंस और अनावश्यक मैसेज से दिमाग को आराम मिल सके और तनाव दूर रह सके। हम चाहें तो भोजन करते समय या सोने से कुछ घंटे पूर्व नो फोन जोन जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल अपनी इंद्रियों की अधीरता को शांत करने के लिए कर सकते हैं। श्रोताओं, हम चाहें तो गूगल डिजिटल वेलबीइंग जैसे इनबिल्ट टूल्स का भी उपयोग करके अपने ऐप्स के लिए दैनिक समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। इससे हम अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं और अच्छी नींद की गुणवत्ता में यकीनन सुधार भी ला सकेंगे। श्रोताओं, अनावश्यक बातें, बेवजह की बहस और गुप्त ईर्ष्या जैसी विचलन से बचने के लिए हमें ऑफलाइन हॉबी की तरफ भी आज बहुत हद तक सजग होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने भीतर खाली समय में किताबें पढ़ने, पेंटिंग करने, योग या किसी तरह के व्यायाम को अपनाने की तरफ पहल कर सकते हैं और अपनी दुनिया को शांत, स्थिर और कुछ हद तक सुंदर बना सकते हैं। मित्रों, इस तरह की तमाम छोटी छोटी हीलिंग थेरेपी को स्वयं ही अपनी सुविधानुसार जीवन में शामिल करके हम अपने को व्यवस्थित, सौम्य और संतुलन बनाए रखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं और बेवजह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने भीतर की आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा को विकास के लिए थोड़ा और प्रबल और थोड़ा और सचेत बना सकते हैं। ये तो हुई जहन और दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले कुछ प्रयासों के विषय में बातें, लेकिन मन का क्या है? मन की खुशहाली के लिए हम क्या कर सकते हैं? मौसम तो है कि मन को खुश कर सकें, आसपास की दुनिया को सुंदर बनाए रख सकें। रिमझिम फुहारों के इस मौसम में आइए आज हम भी संकल्प लें कि इस धरती को सुंदर बनाए रखने के लिए हम अधिक से अधिक वर्षा के जल का संचयन करेंगे, खुली जमीन पर पौधे उगाएंगे, अन्न के कण और आनंद के हर क्षण को कभी व्यर्थ जाने नहीं देंगे और उजले उजले फूलों, बहारों, खेतों, खलिहानों, नदियों से भरे इस खूबसूरत संसार को तनिक और सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे।

श्रोताओं, जिंदगी के रंग, प्रकृति के नज़ारे और खूबसूरत बनते रहें, हमारे दिलों में मोहब्बत की लौ जलती रहे। इसी नोट पर दीजिए विदा आपकी अपनी अंतर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम के सफर में आप सभी सुनने वालों का स्वागत। श्रोताओं, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम के सफर में आप सभी सुनने वालों का स्वागत। श्रोताओं, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे भारतीय हिंदी सिने जगत के उस अनोखे हास्य कलाकार के विषय में, जिन्होंने एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में तो अपनी पैठ दर्शकों के दिलों में मजबूत की ही, बल्कि हास्य या कहीं कॉमेडी के रसायन को भी तनिक और चटकदार बनाया। अपने अद्भुत स्क्रीन प्रेजेंस और उत्कृष्ट कॉमिक टाइमिंग की वजह से इन्हें दर्शकों, आलोचकों, निर्माताओं और निर्देशकों का जहां एक ओर भरपूर प्यार और सहयोग मिला, वहीं दूसरी ओर इनकी अदायगी को दिल खोलकर उस दौर के देखने सुनने वालों ने खूब सराहा, खूब नवाजा। अब ये कलाकार कौन हैं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माए गए इस बेहद प्यारे से गीत को।

0: रफ़ी की आवाज़ में जावेद अख्तर की लिखी रचना, उषा मंगेशकर के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था शबनम और यकीनन इस गीत को सुनते हुए आप में से बहुतों ने अब तक ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता महमूद के विषय में। जी हाँ साथियों, महमूद अली ने लगभग 3 दशक के अपने समृद्ध करियर में 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। महमूद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म किस्मत से की, जो 1943 में रिलीज हुई। इस फिल्म में महमूद ने अशोक कुमार के बचपन का किरदार निभाया। महमूद ने एक ज़माने में अपनी जीविका चलाने के लिए टेबल टेनिस सिखाने वाले एक कोच की नौकरी भी की। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव के विषय में।
1: हुरिया, हुरिया, हुरिया, हुरिया, हुरिया।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महमूद के विषय में। महमूद ने शुरुआती दौर में 2 बीघा ज़मीन और प्यासा जैसी छोटी फिल्मों में काम किया, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे छोटे मगर असरदार किरदार निभाए। मगर महमूद को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला, बड़ा ब्रेक कह सकते हैं, परवरिश फिल्म में जो रिलीज हुई 1959 में। इसमें महमूद ने राज कपूर के भाई का किरदार निभाया और फिल्म बहुत हिट भी हुई। और इसके बाद फिल्म आई गुमनाम। गुमनाम फिल्म में महमूद ने एक दक्षिण भारतीय रसोइये की कालजयी भूमिका निभाई और फिर

पलट कर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत। लेकिन इस फिल्म के गीत को आप तक पहुंचाने से पहले हम आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले आपने सुना किशोर कुमार और महमूद की आवाज़ में कुंवारा बाप फिल्म का गीत। मजरू की रचना थी, राजेश रोशन का संगीत था। आइए सुनते हैं इस वक्त गुमनाम फिल्म का गीत।

0: कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हम काले हैं तो

महमूद और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे गुमनाम फिल्म का गीत। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सवारा था इस गीत को शंकर जयकिशन ने। महमूद के विषय में कुछ और दिलचस्प किस्से हम आपसे साझा अवश्य करेंगे, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर

आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई यानी आज स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665 92 और 3100026। इन दोनों ही नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई यानी आज और 24 जुलाई यानी कल शाम को 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना यहीं समाप्त हुई और अब हम बढ़ते हैं आगे। और महमूद के विषय में हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में, तो श्रोताओं महमूद ने सफलता का स्वाद चखने के बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। प्यार किए जा, लव इन टोकियो, पत्थर के सनम, बॉम्बे टू गोवा, साधु और शैतान, ससुराल और भी न जाने कितनी ही अनगिनत फिल्में आज याद आ रही हैं। महमूद ने बाद के दिनों में अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन से फिल्म बनकर सामने आई छोटे नवाब के रूप में। फिर उन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का निर्माण किया। फिर 60 के दशक में पड़ोसन फिल्म में उनकी कलाकारी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म पड़ोसन हिंदी सिने जगत में श्रेष्ठतम हास्य फिल्मों की फेहरिस्त में आज भी अव्वल नंबर पर गिनी जाती है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत।

0: గారే గారే
1: జరపడే
0: గారే గారే
1: సూర బదల
0: గారే గారే
1: అమ్మక
0: గారే
1: సూర కి తర
2: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ హై సాలరీ బస్ ఏక్ క్లిక్ మే అరే వా अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, अभिनेता, निर्देशक, कथाकार, निर्माता रह चुके महमूद ने वर्ष 1996 में शाहरुख खान को लेकर आखिरी फिल्म बनाई दुश्मन दुनिया। महमूद अपनी बात और प्रतिभा के पक्के कलाकार हुए। इन्होंने फिल्मी दुनिया में न जाने कितने ही जूनियर कलाकारों को न केवल सहायता प्रदान की बल्कि उन्हें आश्रय भी दिया। इनकी जोड़ी को आईएस जौहर जैसे कलाकार के साथ भी खूब पसंद किया गया। अपने आखिरी दिनों में महमूद अपने लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य से लड़ते रहे और अंततः 23 जुलाई 2004 यानी आज ही के दिन इस दुनिया से कूच कर गए। आज महमूद की याद का दिन है। आज उस महान हास्य कलाकार की अमिट अभिनय यात्रा को दोबारा रुककर देखने समझने का दिन है, क्योंकि कलाकार कभी मरते नहीं, कलाकार सदैव कला के जरिए जीवित रहते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम दो गीत आपने सुने पड़ोसन फिल्म से किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में, रजिंदर किशन और आरडी बर्मन के लिखे, रजिंदर किशन के लिखे बोल थे और आरडी बर्मन का था संगीत। और इस वक्त आप सुन रहे हैं महमूद इन गोवा फिल्म का गीत मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कमर जलालाबादी की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आज का ये सफ़र महमूद की याद के साथ यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलास

0: केंद्र से बोल रही हैं। सुबह के 8 बजे हैं समाचार, अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
6: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
5: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
7: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
5: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से

0: अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी

0: पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम माटी के स्वर।

माटी के स्वर कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार। मीठे मीठे से गीतों की सौगात लेकर रिमझिम फुहारों के बीच हम हैं एक बार फिर आपके साथ। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं राधेश्याम मनहर और सत्य नारायण मनहर की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया है भाटापारा से हमारे इन साथियों ने, बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, सियाराम, अश्वनी पांडे, सुब्रत चौधरी, अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ, हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, अनुराधा, यामिनी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण दुलारी वर्मा, मोहाली चंडीगढ़ से हमारे साथी हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, अकलतरा से हमारे इन साथियों ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है, रमेश कैवर्त, राजकुमारी, आरती कैवर्त, सिहावा से हैं मिथिलेश, मधु, हिमांशु, अंकित दिवांगन, डोंडी लोहारा से हमारे श्रोता हैं मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास और इनके बहुत सारे साथी, शांतिनगर भाटापारा से मिलऊ दास, कुलदीप, संतोष, संदीप, अजीत, कुलदीप, बिरछा, संजना और लक्की, बेमित्रा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबैये, राधिका, अनिष्का, तन्मय, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन और खुशी और साथ में हैं रौनक सेन। इन सभी साथियों ने फरमाइश लिख भेजी है राधेश्याम मनहर और सत्यनारायण मनहर की आवाज़ में गाए इस मीठे से लोकगीत का। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, 103.3 गीगाहर्ट्ज की तरंगों के साथ हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ और इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। साथियों, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फ़ोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई यानी आज स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवा मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर R.M. त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतुओं में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए। हमारे नंबर है मित्रों 2665 92 और 3100026। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई यानी आज शाम को और 24 जुलाई यानी कल संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना यहीं समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का अगला गीत भागवत सप्रे की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत के लिए फरमाइश हम तक पहुंची है हमारे इन साथियों की। अवरेठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीना, नेहा, मोनिशा। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी। सारा गांव से

सुजान वर्मा, सहुद्रा आयुषी, कृत वर्मा, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत वीरेंद्र और ब्रजकांत सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा, दतरंगी बाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, बुरगहन से हमारे साथी हैं रामदुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, और महादेव घाट अमलेश्वर से हमारे इन श्रोताओं ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, इन सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं भागवत सपरे की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है रमेश कुमार और साथियों की आवाज़ों में। पसंद हमारे श्रोता साथियों की है। कतियापारा चूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फेज खान, हजरुन्निशा, सादिया खान। बिल्हा से शेख नासिर और मेजबीन बानो। अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। भाटापारा से प्रेमलाल, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र। अकलतरा से अभिनव, अभिषेक, उमा देवी। पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। और भाटक पारा से सीगीत की फरमाइश लिख भेजी है दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम और सौरव रावत ने। इन साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, माटी के स्वर कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए। पेश है बरसाती कौशिक और ईश्वरी बंजारे की आवाज में। पसंद हमारे इन साथियों की है, देवरी भाटापारा से है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम, पुनेश्वर फनेश्वर, मुकेश कुमार रजक, हाव्या और सानिया रजक। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू। बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता और स्वाति माखीजा। दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। रायपुर से हैं सोमनाथ, वंदना, सूर्यप्रकाश, कनक, गुनगुन, अदिति और तन्मय यादव। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, पेश है कार्तिक राम डिकसेना और देवी निषाद की आवाज़ में। पसंद इन श्रोता साथियों की है। जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु, मोंगरा देवी, प्यारे लाल मिश्रा और ठगिया देवी। भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ शौर्य और शुभम जैन ने भी इसी गीत की पसंद हम तक लिख भेजी है।

0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की पहली कड़ी।
1: यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल सेंटर फॉर WTO स्टडीज IIFT। दिस टॉक वाज पार्ट ऑफ अ वेबिनार कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी ज्यूरिसप्रूडेंस हो, वेदर एनवायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं। एंड देन वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंट

0: ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड बिकॉज़ द टर्म एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड व्हिच आई आल्सो एग्री विद सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजली छूट जाता है लोगों के नोटिस से क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मेंशनड होता है इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट जनरली कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो वो 1972 के बाद आए हो बट intrinsically Indian jurisprudence always had an important it always had given importance to environmental preservation so if we can see 1972 mein conference hua uske baad 1974 mein water act aaya 1980 mein forest conservation act 1981 mein air conservation air prevention and control of pollution act and finally 1986 mein environmental protection act which is more of an umbrella act jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hai But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के under काम करते हैं and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again. But India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites, and Basel Conventions, जो wetlands की बात करता है, तो also we know, तो after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. में when we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner कि कितने तरीके के rights हैं. Environment law कहाँ कहाँ से आ सकता है? So ये constitutional rights और fundamental rights क्योंकि like I mentioned in the very beginning उसमें mentioned नहीं था constitution में शुरुआत में तो वो धीरे-धीरे develop हुआ through amendments but उसमें supreme court का particularly काफी important role रहा है तो starting with one of the cases तो it is something which people say in environmental law circles कि if we talk about the journey of environment law वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद का केस जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के वहां पे सिटीजंस वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था विच इज नाउ बीएनएसएस उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजंस हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया सो इट इज देयर चॉइस नाउ दे हैव टू डील विद इट सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environment.

0: मेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस
1: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्सन्स हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई. उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है. बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट. तो पहला एस्पेक्ट तो ये था. दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी. कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई. थर्ड वॉज सुओमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने. नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओमोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओमोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंड रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसने आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. So just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga River, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें court ने पहली बार एक high level पे environmental remediation के लिए cost pay करने के लिए बोला chemical factories को. एंड द TN गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
0: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विधि एवं न्याय मंत्रालय। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:14 हुए हैं। अब से लेकर सुबह के 10 तक हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल और तर्ज या रहमान की।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
6: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए,
9: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जबड़िया जोड़ी फिल्म से राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजें हैं, शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची के बोल, और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
10: तोहरी लच के जब कमरिया सारा जिला ही।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गाना। गीतकार थे शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कि खयाम साहब जो मेरा हीरो

0: वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खय्याम।
0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। आए हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या?

0: ताला तंदाना, ये सोला ताला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।

या लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा

रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: பத்தாஷா பத்கம்மா பத்கம்மா
1: எங்க அண்ணா எங்க அண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
1: ओ पहुंच गई ना?
3: अरे एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना
1: है।
3: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?

0: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता है ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
0: आइयो यो पहले बोलना ना ऐसा बात। बाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
2: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
0: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
3: चल चल
0: देवी तुम बदाना बदाना।
4: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
5: यह कच्चा

0: है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या है। देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाऊंगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।

0: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
1: अरे साहब, मैं बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
2: नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं। डॉलर चलेगा।

0: श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार हम रुख करेंगे इस वक्त रायपुर केंद्र की ओर।
1: 55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि विश्व में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी परिवार के सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र

0: पहले से जारी है तो केवल वर्ष 1950 के दस्तावेजों के अभाव में परिवार के अन्य पात्र बच्चों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जाए और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। न्यायाधीश ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चल रहे महानदी जल विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी भी उपस्थित थे। इसके अलावा श्री साहू ने केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए एलएलबी छठवें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा कराने का रीशेड्यूल जारी किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए मई में हुई परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में ये स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। इससे पहले कल सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के समाचार मिले हैं। दुर्ग जिले की अदालत ने पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ 17,52,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार को ओडिशा स्थित जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का काम दिलाने का झांसा देकर रकम ली। बाद में जांच में कथित वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज फर्जी पाए गए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कैडर की भारतीय वन सेवा अधिकारी सौतोविशा समाजदार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निदेशक पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 MHz पर सुबह के इस वक्त 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद के एक नए अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अंतरा। स्वीकार कीजिए अंतरा का अनुरागी नमस्कार। और कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म से। मजरू की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत और पसंद इन श्रोता साथियों की है। पोड़ी लापा से हैं विद्यानंद साहू, त्रिवेणी रानी, बबली, सुमन, मिंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू। बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, आंचल चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश और चंद्रशेखर। हथबंद करेली से

रामाधार ध्रुव, संजय कुमार, संजू कुमार ध्रुव, अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, और दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू, रिंगनी से विनेश वर्मा, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सिमगा से रमेश कुमार, माचा यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर व्रेक, जयतेक व्रेक और मीका व्रेक, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना, लालपुर से लुकेश और समीर यदु, अवरेठी पारा बाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा साहू ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो आपकी पसंद कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म से लीजिए, सुनिए।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का दूसरा गीत लीजिए पेश है सुरेश वाडिकर की आवाज़ में वारिस फिल्म से। वर्मा मलिक की लिखी रचना, उत्तम जगदीश का संगीत, पसंद इन श्रोता साथियों के। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, विक्की, लक्की, नानू, रविंद्र सेन। गंडई पंडरिया से ही पवन कुमार, प्रभा देवी और इनके बहुत सारे कुटुंब। औरंगाबाद से राजेश, शीतल, राजदीप, राशि। शांतिनगर से मिलो, दास, कुलदीप, संतोष, संदीप, अजित, कुलदीप, बिरछा, संजना और लक्की। पथरिया से नरेन, नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष, नेताम। बालोद से कैलाश, सुरेश, डिकेंद्र और योगेश यादव। मुंगेली से संतोष कुमार, सोनी, सुनीता, खिलेश, दानिश, दीक्षा, पीहू, नेहल, संजय, पूजा, रमा, पूर्वी, पुलकित, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी। सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। बेमित्रा से पूर्णिमा, पूजा, आरती, भव्या और सुषमा सारथी। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी। सारा गांव से सुजान, सहोद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। जुराली से देवचरण, अंजोरमती, भूपेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, दक्ष कुमार, दिव्यांश कुमार और कुणाल कुमार पटेल ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है वारिस फिल्म का गीत इन साथियों की पसंद पर।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में वारिस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में लीजिए पेश है अलका याग्निक और कुमार शैनू के युगल स्वर में दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का है संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम, सौरभ रावत। बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। डोंडी बालोद से नमित कुमार, गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू, मुरली, गौतम। भाटापारा से प्रेमलाल, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र। अकलतरा से अभिनव, अभिषेक, उमा देवी, साहू। अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेंद, तुषारिणी मसिया। पालछुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर। और लुथरा खमरिया से हमारे साथी हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए पेश है उदित नारायण की आवाज में अनाड़ी फिल्म का गीत। समीर की रचना आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है और फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। माटापारा से पचकामल, मोतीलाल, बसंत ब्रिगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, सियाराम, अश्वनी पांडे, सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ, नीलम। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार ने। भाटापारा से हैं नोखेलाल, हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि, पारसमणि। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी और प्यारे लाल मिश्रा। भाटापारा से ही मिलो मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की भा

नीलक्ष, विमान मानिकपुरी, बिरछा मानिकपुरी, संजना संगीता अंजलि और चारू मानिकपुरी। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, जयवीर सिंह, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा साहिल बजाज। और लाहौद से कमलकांत पटेल, राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल ने भी इसी गीत को पसंद किया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में धड़कन फिल्म से, समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मयाराम, पुनेश्वर, फनेश्वर, मुकेश, हाव्या और सानिया रजक। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन

ममर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी मिल्की मीनाक्षी और निधि देवांगन, तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल शिवास, अनीता शिवास, अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश और अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान ने इस गीत की फरमाइश भेजी है।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का ये आखिरी गीत अभी आपने सुना धड़कन फिल्म से, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है नए तराने।

श्रोताओं, नए तराने कार्यक्रम के सफर का पहला नया तराना आपने सुना अरिजीत और अंतरा की आवाज़ में, प्रीतम के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने, फिल्म का नाम है मेरी क्रिसमस। लीजिए सुनिए अगला नगमा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में धुरंधर फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के लिखे बोल थे और शाश्वत सचदेव का संगीत था। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा फाइटर फिल्म से। आवाज़ें हैं विशाल और शेखर की, साथ में हैं शिल्पा राव। रचना कुमार की है और धुन बनाई है विशाल और शेखर ने।

0: श्रोताओं, नए तराने के सफर का अगला तराना आप तक पहुंचाने से पहले इस वक्त वक्त हो गया है आज के ट्रैफिक अपडेट को सुनने और सुनाने का। तो लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, अपने जिले की आज की यातायात संबंधी जानकारी सुनने के लिए आप अपने रेडियो सेट में सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस जनों के द्वारा शहर से लेकर गांव-गांव में भी विरोध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया गया है। इस क्रम में आज दोपहर 12 बजे शहर के नेहरू चौक, गांधी चौक, अमरैया चौक, बुधवारी बाजार में, इसी प्रकार शहर से बाहर जोंदरा चौक मजदूरी, महामाया चौक रतनपुर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रत्येक सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से आम यातायात बाधित ना हो, सड़क जाम होने से आम जन परेशान ना हो और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक वाहन किसी भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। इसके साथ ही कहीं मंद तो कहीं सामान्य गति से सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, जिले में पर्याप्त वर्षा के होते ही हमारे कृषक खेती के काम में जोर शोर से लग गए हैं। प्रायः सभी खेतों में कृषक काम करते देखे जा रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, किंतु कुछ कृषक जो ट्रैक्टर से खेतों में काम करते हैं, इनमें कुछ ट्रैक्टर चालक घर से ही ट्रैक्टर के पिछले चक्के में केज भी लगाकर गली मोहल्ले या मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर दौड़ाते हुए खेत तक जाते हैं और खेत में काम करने के बाद इसी हाल में, अर्थात दोनों तरफ केज भी लगे, सड़क गली मोहल्ले में पूरी गति में ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, जो सड़कों में दो वाहनों की जगह घेर कर चलते हैं। इससे सुगम यातायात प्रभावित होती है तथा सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जब ये ट्रैक्टर खेतों में काम करने के बाद बाहर सड़कों में आते हैं, तब केज व्हील में लगे बड़े बड़े मिट्टी के लोंदे पूरी सड़क में गिरते जाते हैं। ये भी सड़क दुर्घटना के कारण है। अतः सभी कृषकों से अनुरोध है कि केज व्हील लगाकर सड़कों में ट्रैक्टर न दौड़ाएं, इसे खेत में पहुंचकर ही लगाएं तथा खेत में ही काम करने के बाद निकाल देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का ट्रैफिक अपडेट।

कॉकटेल टू। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महमूद, राघव चैतन्य और रुआ काई की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल थे, प्रीतम का संगीत था। लीजिए सुनिए नए तराने, इस कार्यक्रम का अगला नया तराना।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में ओ रोमियो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्दों के मोती पिरोए थे गुलजार ने, और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हेलो, सोचो कि ऐसी क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी। हाँ,

सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में परम सुंदरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना थी, सचिन जिगर ने संगीत से इस गीत को संवारा था। अब आइए सुनते हैं धुन की फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में धुन की फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इरशाद कामिल की रचना थी, प्रीतम का संगीत, और इस अंतिम नगमे के साथ ही नए तरानों का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास

0: है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने का।
1: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
0: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजय जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नव वर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
1: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
3: पकड़ लेंगे।
4: और ये पकड़ लिया।

0: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
1: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
5: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
6: महाराज की जय, महाराज की जय।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
7: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदल कर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
8: आज मैं राजा बनूंगी।
9: आज मैं राजा बनूंगा।
3: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
8: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
8: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
8: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।

0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
1: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
2: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
3: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी?
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
3: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
3: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ?
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
3: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन, आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
3: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया,
2: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत

0: आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिया मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
4: अरे मशकूब भाई,
5: जी जनाब,
4: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
5: लीजिए जनाब।
4: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो
5: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
4: रखो रखो।
5: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
4: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
5: शुक्रिया
4: शुक्रिया।
3: ये अमृत वाला
6: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
5: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
4: मशकूब भाई,
5: जी जनाब,
4: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
5: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
4: लाओ। बस बस,
5: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
4: सही कहा मशकूब भाई,
5: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
4: अभी तक तो कुछ नहीं।
5: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
4: अरे नहीं नहीं
5: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
4: भाई
5: जी,
4: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
5: क्या बात करते हैं,
4: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
5: इसमें नेकी की क्या बात है?
4: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
5: ये तो मेरा फर्ज था।
4: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
5: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
4: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
5: अच्छा,
4: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
5: ये तो बड़ा नेक काम है।
4: अब ये लीजिए।
5: ये किताब, ये किताब किस लिए?
4: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
5: अच्छा,
4: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
5: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
4: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
5: तौबा तौबा तौबा,
4: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
5: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
7: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो

0: कमाल का असर है
1: जनाब।
2: लाजवाब इंसान है वो।
1: क्या बात करते हो,
2: बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जो जो मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
4: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
3: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
4: पैसा लाए हो?
5: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
4: चुम्मू उठाए खाली आप चले आते हो।
5: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
4: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
5: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
4: बच्चे को गोद में उठाओ।
5: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
4: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
5: मर जाएगा ये।
3: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
6: अमृत वाला आ

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा।

0: मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
1: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? क्या खूब रंग चमक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा, उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। इस वक्त सुबह के 11:30 हो चुके हैं। अब से लेकर सुबह के 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11:55 पर प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे अपने रायपुर केंद्र से। और उसके बाद दोपहर 12 से लेकर शाम के 4 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। तो चलिए इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक मामले में BA LLB छठवें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA LLB छठवें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा कराने का रीशेड्यूल जारी किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए मई में हुई परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी परिवार के सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से जारी है तो केवल वर्ष 1950 के दस्तावेजों के अभाव में परिवार के अन्य पात्र बच्चों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जाए और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और उदासीनता पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ये लापरवाही केवल संयोग या अनजाने में हुई चूक नहीं हो सकती, ये जांच में गंभीर लापरवाही और पुलिस के गैर पेशेवर रवैये को दर्शाती है, जिससे NDPS कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कोर्ट ने NDPS एक्ट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा 7 आरोपियों को सुनाए गए 10 से 15 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द करते हुए ये टिप्पणी

0: की है। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में यह स्थिति अगले दो दिनों तक जारी रहेगी। इससे पहले कल सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के समाचार मिले हैं। कोंडागांव जिले के गिरोला रांधन मार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार दो व्यक्ति माकड़ी जा रहे थे, इसी दौरान लंजोड़ा बालोंड जंगल के पास बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। अस्पताल में एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, घायल दूसरे युवक का उपचार जारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बालोद में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में एक इंजीनियरिंग छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक मामले में बीए एलएलबी छठवें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन

0: रेड्डी ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामची जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
3: गीता दत्त को सुनिए फिल्म सुजाता में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।
4: नींद भरे पंख लिए झूला झूला

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: कैफी आजमी की गीत रचना SD बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई करियर

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत। स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

0: सुरीला सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप लोग।
1: अरे भाई, आज तो हम किसी विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो अच्छे ही होंगे और तैयार भी हैं आप, है ना?
0: हाँ, आज सुरीला सफर एक ऐसा सफर होगा जो एक ऐतिहासिक यात्रा बन जाएगा, है ना? आज इस सफर में हम होंगे, आप होंगे और साथ में होगा हमारा प्यारा सा साथी, हमारा रेडियो, हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा मोबाइल, जिस पर न्यूज ऑन AIR ऐप हम डाउनलोड कर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे, है ना? एक ऐसा साथी जो हमारे लिए देश विदेश की ताजा खबर, मौसम की जानकारियाँ, सरकारी नीतियाँ, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और भी न जाने क्या क्या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है। तो आज सुरीला सफर हमारे इस प्यारे साथी के साथ हम पूरा करने वाले हैं। सचमुच आज का ये सफर में हम होंगे, आप होंगे और होगा हमारा प्यारा साथी, हमारा रेडियो। तो बताइए, तैयार है ना आप हमारे साथ चलने के लिए? मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार है। आज का टेक्स्ट भी हम आपको पढ़ देते हैं ताकि ये सफर और आसान हो जाए। और इस पूरे सफर के दौरान आज हम इन्हीं बातों पर अपना और आपका ध्यान रखेंगे, ध्यान केंद्रित भी करेंगे। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज कुछ ऐसे गीत जिन्हें सुनकर हम ठिटक गए हों। आप भी बता सकते हैं वो कौन से गीत थे जिन्हें सुनकर आप ठिटक गए हमेशा और आज भी ठिटक जाते हैं, या सिहर जाते हैं, या सहम जाते हैं, या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप खिलखिला उठते हैं, या आप मजा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारापन महसूस करते हैं किसी गीत को सुनकर। उन सभी गीतों का जिक्र कम से कम शब्दों में आप कर सकते हैं। हाँ, वो गीत जो हमारी जिंदगी से जुड़ गए हो। तो आज सुरीला सफर भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के गानों और गायकों का सफर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम आज बात करने वाले हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की क्या भूमिका रही, आपके जीवन में रेडियो क्या महत्व रखता है, रेडियो का महत्व क्या है, रेडियो का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास में रेडियो प्रसारण की भूमिका क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी ने ऐतिहासिक और अतुल्य योगदान दिया है, क्या है वो योगदान, बस आज सुरीला सफर इन्हीं खास बातों पर। तो आज के शब्द तो आपने नोट कर ही लिए हैं जिन पर हमने आज के गीत चुने हैं। आज के कुछ शब्द हैं बाबुल, वंदे, बरस, गुलबदन, प्यार, बेवफा, मन, आ जाओ, दाग, मुहे, हृदय और दुल्हनिया। तो ये हैं आज के शब्द जिन पर हमारे साथियों ने यानी आपने गीत लिखकर भेजे हैं और बहुत सारे गीत इन शब्दों से मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा और सुरीला सफर इस गीत के साथ।

यह अवस्थी केएल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और केएल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब हर कार्यक्रम में केएल सहगल साहब गूंजते थे, और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणी के केंद्रों में तो केएल सहगल साहब का गीत आखिर में जरूर बजता था, और उस गीत को सुनने के लिए न जाने कितने लोग उस आकाशवाणी केंद्र को सुनना पसंद करते थे। आपको भी वो याद ताजा होगी। फिलहाल हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उनका मैं वाचन करती हूं, उनके संदेशों का। आप लिखते हैं कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अंतरंग और भावनात्मक साथी है। ये दृष्टिहीन होने के बाद भी शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में सुंदर चित्र उकेरने की क्षमता रखता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के इस युग में रेडियो की खूबी ये है कि ये केवल ध्वनि पर निर्भर है। जब उद्घोषक अपनी गर्म जोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे या अब के बरस भेजो भैया, कुछ गाने इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है, मंदाकिनी जोशी की आवाज में मैं गाने सुनने को तैयार हूँ। नहीं भाई, हमारी आवाज में कोई गाना आप सुनना नहीं सुन पाएंगे। आज आप बड़े बड़े कलाकार जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, उन कलाकारों को सुनना पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी। एक श्रोता लिखते हैं कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी रेडियो खरीदा था और रेडियो पर के एल सहगल के गाने वो सुना करती थी, और वही भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी, और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्राय सभी के घरों में दिखता था, और आज मोबाइल ऐप आ गया है लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, मुझे आपने शुभाशीष दिया, और लिखते हैं कि यथानाम तथा गुण को सार्थक करने वाली आप अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नवरूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिंदी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है, और नव चैतन्यता ना जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा।

या क्या बात है, आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है, शुक्रिया मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित कालजई ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। के एल सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है। बहुत सुंदर, आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे।

ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई। अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए। जब ये गाना सुनता हूँ पुराने जमाने में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में केएल सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है। इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीतमय बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं। और आज हम आपसे सिर्फ दो सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे, क्यों है ना? आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवानी श्रोताओं के लिए बहुत खुशी भरा दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाजों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूं कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं जिसमें विविध भारतीय सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्ते गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी, आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ।

वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुंजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुंजा जी हाँ, वो है सुंजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से, अच्छा, जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के, रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें, शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया, अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने। याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

बताइएगा इस गीत को सुनकर कि क्या आपने इस गीत को कभी किसी के लिए गाया था या सोचा था?

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे आपने सुने होंगे जयमाला में जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई

बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा? आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं? उसके बाद वंदे मातरम का गान आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका? क्या अंतर आया जीवन में? ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर। आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो कल जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है जो आप कर भी देते हैं। और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूं, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया। फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने YouTube पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही, लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर।
चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और

तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन, ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में उड़ान भरता था, बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद? हमें लगता है बहुत सुंदर गीत, जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था।

और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो, क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए। वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहां के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊं। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज उन तीन शब्दों की बातें जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये तीन शब्द काफी बोले और सुने जाते हैं। ये शब्द बातचीत के शिष्टाचार है। इन्हें बातचीत में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि आत्मीयता और मेल मिलाप रहे, वातावरण अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ ना उम्र की सीमा है ना स्टेटस का बंधन। काम करवाने के लिए बड़े छोटों से या बॉस अपने सबॉर्डिनेट से प्लीज कह दे तो काम और अच्छी तरह हो सकता है। प्लीज अनुरोध है। इस अनुरोध में जिसे काम करना है उसे भी सम्मान मिल गया और काम भी खुशी खुशी हो गया। इसी तरह सॉरी शब्द भी आयु, पद और वर्ग का भेदभाव नहीं करता। बस ये ख्याल रखना है कि सॉरी बोलना या माफ करे ये कहना सिर्फ बोला नहीं गया बल्कि उसे महसूस भी किया गया। मसलन गुस्से में किसी को भला बुरा कहने के बाद या देर से पहुंचने पर अगर माफी मांगी गई है तो फिर दोबारा वैसी ही परिस्थितियां ना बने। गलती दोहराने का मतलब है कि पहले मांगी गई माफी निरर्थक है। सॉरी या माफ कीजिए जैसे शब्द सार्थक तभी होते हैं जब वाकई उन्हें दिल से महसूस किया

जब हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो किसी को शुक्रिया या थैंक्स कहते हैं। इस तरह आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए जिंदगी में जब भी किसी को शुक्रिया कहने का मौका आए तो फौरन एक मीठा सा थैंक यू बोलें, लेकिन दिल से, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक हेल्प तक ही थैंक यू को सीमित ना करें, यानी भौतिक काम या किसी चीज को देने पर ही थैंक यू कहना जरूरी नहीं। आत्मबल बढ़ाने वालों, सपनों को नई दिशा देने वालों, अपने बेगाने जो भी आपके काम आए, उन्हें शुक्रिया अदा करें।

जिंदगी की डिक्शनरी में प्लीज, थैंक यू और सॉरी का बहुत महत्व है। ये शब्द आभार प्रकट करने या खुद पर काम करने के मौके देते हैं। इन्हें बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि खुद का सम्मान और हिम्मत बढ़ती है। दूसरों को महत्व देने और खुद की जिम्मेदारी लेने की नीयत से बनाए गए ये शब्द सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के हर पल के लिए कृतज्ञता हो और गलतियां सुधारने की कोशिश होती रहे, तो कितनी खूबसूरत बन जाएगी ये जिंदगी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर

0: एक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के

0: मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिए बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और

0: और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रवि का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई

मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंह भी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीगर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जीएस कोहली का संगीत, फारूक केसर के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शिकारी।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगी?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी।
1: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
0: जी,
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे

0: श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: शुक्रिया। बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी
0: जी
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं। और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ।
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी।
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इन्फॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी,
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती हमारा चैनल है,
0: जी जी
1: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है।
0: जी।
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है,
0: जी,
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
0: जी,
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है।
0: जी,
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी मुझे लगता है।
0: जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर एक गाना बनता है, बताइए
1: हाँ,
0: कौन सा गाना सुनवाए?
1: बिल्कुल
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: या बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ
0: सुनते हैं,
1: जरूर से प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर FM आया, फिर SMS का ज़माना आया, फिर टेलीफोन फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव FM तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज FM इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या BBC रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया FM, और FM ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और FM में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए FM उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो FM के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली FM ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए FM ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे

0: जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है
1: जी
0: जिस
1: जी
0: पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
1: जी जी
0: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए। हम पोस्ट पोस्टर डाला है और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा है मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन सुन के, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ रही होती थी। माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा, रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं वडोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज़ के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है, जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला। और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर, राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसे, कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
0: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है
1: जी
0: और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब 10th के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, 10th के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज़्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस
1: जी
0: मैथ्स
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़ा ऐसे चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं, मैथ्स में चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं ना कि नहीं,
1: टच कर
0: अब तो
1: गई,
0: मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
1: चुनौती के रूप में
0: हाँ,
1: लिया आपने।
0: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहाँ पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, अलग अलग साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी,
1: जी बिल्कुल,
0: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला
1: हाँ
0: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था। हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।
1: जी
0: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी।

0: और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ
1: जी
0: एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में, और दूसरा
1: भेजना
0: कि
1: नहीं है,
0: लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
1: शहर से
0: झिझक
1: बाहर नहीं जाना
0: झिझक
1: है।
0: रहती थी,
1: जी।
0: तो वो एक चैलेंज था। तो काफ़ी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफ़र और वो बचपन के दिन, और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी, और
1: अच्छा
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता था,
1: क्या बात
0: उसके
1: है।
0: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीज़ें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे, तो घर पे थोड़ा मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी। तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
0: नहीं
1: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता
0: नहीं
1: दीजिए हमारे
0: नहीं
1: श्रोताओं
0: वो नहीं, उसकी
1: को।
0: इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी। तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
0: जी
1: जीती
0: हाँ
1: थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं। तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए,
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं।
0: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ। मीनाक्षी जी, हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खास तौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था,
0: हाँ
1: डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी
0: जी
1: और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग। तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ,
0: जी
1: वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूँगी। और कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह,
0: जी जी
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसमें एक सोलो डांस कंपटीशन भी रखा गया था बॉयज़ के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हाँ बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या इस
0: अच्छा
1: तरह की चीज़ें,
0: जी
1: क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी
0: जी
1: हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कॉम्पिटिशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज,
0: जी
1: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज़ के साथ ही आप
0: अच्छा
1: पार्टिसिपेट कर
0: हाँ
1: लीजिए
0: हाँ
1: और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा,
0: छोटी
1: वही
0: सी
1: मेरी
0: आशा
1: पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 days थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की। और फिर कंपटीशन वाला दिन आया और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में,
0: क्या बात है,
1: सिक्सटीन बॉयज
0: वाह।

0: I was the only girl candidate who participated and I got the first prize. And I still remember कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है.
1: क्या बात है.
0: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं.
1: जी.
0: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का.
1: बिल्कुल सही बात है. और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है. अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती.
0: सही है.
1: और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है. यहां पर मीनाक्षी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
0: जी
1: फिर ब्रेक के
0: हाँ
1: बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं.

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी कर कुछ कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूं, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते

0: थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था, और उस समय तो चूंकि शॉर्ट वेव ही ज्यादा हम चलता था,
1: आपने कोई
0: मीडियम
1: रेडियो
0: वेव।
1: तोड़ा तो नहीं था?
0: नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको
1: जी
0: ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था, क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड
1: जी
0: शॉर्ट
1: जी
0: वेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो
1: जी
0: रात को हमेशा हम 1 घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है, उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम,
1: जी
0: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है।

0: टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफ़ी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो
1: जी
0: रात को हमेशा हम 1 घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है, उसमें भी काफ़ी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम,
1: जी जी
0: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, और काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है वह,
1: जी
0: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है,
1: जी
0: तो उसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुई, और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई, तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज,
1: जी
0: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफ़ी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं,
1: जी
0: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी, और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वड़ोदरा और आज मुंबई,
1: जी
0: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए, और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
1: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं। और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है, भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा। तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन है। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी
0: बहुत
1: बातें
0: अच्छा।
1: इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूँ और एक शिक्षक हूँ और सखी सहेली सुन रहा हूँ, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
0: हाँ, श्योर श्योर।
1: कौन सा गाना, हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है।
1: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था,
0: जी
1: सुनते हैं यही गाना।
0: जी जी

0: ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइस कंपोनेंट है
1: जी
0: उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है।
1: जी
0: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
1: जी
0: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा। और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ
0: नहीं, बहुत आपके
1: जी।
0: सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार
1: जी
0: और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है।
1: जी
0: और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है
1: जी
0: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है
1: जी
0: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे।
1: जी
0: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी मेरी ओर से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज़ ऑफिस में रखें,
1: जी
0: घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें। और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है और लाना चाहिए सभी को क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा।
1: जी
0: उसके अलावा ममता जी मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी
1: जी
0: कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है वो भी वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं,
1: जी जी
0: और जब आप खुद करके देखें

0: ये वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं. क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट.
1: बिल्कुल.
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. बैलेंसिंग इज द की, आई
1: जी
0: थिंक.
1: सही कह रही हैं आप. और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं. हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं. और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है. और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है. तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए. जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं, आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी.
0: मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के, कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
1: जी
0: वो मैं कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है. तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात है.
0: अभी अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए हैं डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए. और जिम में, जिम के लिए तो मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं. तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है, कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम. तो वो माहौल वैसा ही है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ. एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स से तो मैं ये जा ही
1: जी
0: रही हूँ. और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था. स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ. और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं. लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की. और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग.
1: क्या
0: एंड
1: बात है.
0: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया. तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ
1: जी
0: जिससे आप सीखें दूसरे सीखें. और
1: जी
0: मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ.
1: जी जी
0: बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ.
1: जी जी
0: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं.
1: जी मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. अपने बच्चों से भी सीखें, और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो. और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुँचा रही हूँ. एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है. यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ. सेवा वृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है. क्या बात
0: क्या
1: है भाई.
0: बात है. हाँ
1: आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है. एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से
0: अच्छा
1: हुई है.
0: अच्छा
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है. और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है. और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में
0: रेडियो.
1: पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा. बहुत सारी टिप्पणियां हमारे
0: बहुत
1: श्रोताओं की
0: अच्छा.
1: आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं.
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल.
1: गाना है ये.

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी, हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है,
0: जी
1: और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है,
0: जी
1: परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
0: जी
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
0: क्या बात है।
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का बैलेंस बनाए रखें। हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी, मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, एचआर पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और

0: अनुश्री गुप्ता और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुँचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप
0: नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश

कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने लाखड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जामास पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी नहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। यह एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे।

जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना, जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशन्स दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ, जानेंगे आगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में

एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने लगे।

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के

उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे

पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाडन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनोसेंस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर, लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना

के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे, खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन, आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

संदेश टू सोल्जर्स, यह कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: अमलेंदु मिस्र साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, पार्वतीपुर, बंसीपुर, बगड़ा, सिंघरा, भरदा, दलदली, गणेशपुर, मदन नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, धमनी और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, अरगोती, तिरकेला, तप्ताझरिया, लोटाढोड़ी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, मानपुर, जगन्नाथपुर, झिरमिटी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गांव, चोरकी पानी, बैडाण, बरवाली, कंडराजा, रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गड़ाकटा, पंडरीपानी, फरसकानी, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 107 है। ये सिंघीछाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर, केरा कछार, पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, धनरास, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, कापानवापारा, परला, चोटिया, लमना, कोयलारगढ़रा, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, पंडरीपानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के रवान और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बरबसपुर, सयाभाठा, तालदादर, तेंदुचुआ, पकरीद, हरदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे CF1 में भाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म नूरी से। शब्द थे जान निसार अख्तर के, संगीत था खयाम का। आइए अब सुनते हैं फिल्म काला पत्थर का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

इस समय हमारे केंद्र आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में फिल्म त्रिशूल का गीत। रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत है खयाम का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए शैलेंद्र और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द हैं गुलशन बावरा के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म कभी कभी का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है खयाम ने।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दीवार, शब्द हैं साहिल लुधियानवी के, संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म दीवार के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा।

महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को गीता होता का नमस्कार। बहनों, बारिश का मौसम अपने साथ केवल हरियाली ही नहीं लाता है बल्कि परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की सौगात भी लेकर आता है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट, छत पर गिरती बूंदों का मधुर संगीत और घर के भीतर अपनों को साथ, ऐसे यदि बच्चों को एक सुंदर सी कहानी सुनाई जाए तो यह पल जीवन भर की स्मृति बन जाता है। जी हाँ बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों को कहानी जरूर सुनाएं। इस विषय पर बहनों, केवल कहानी समय बिताने का साधन नहीं है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति को पंख देती है।

महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को गीता होता का नमस्कार। बहनों, बारिश का मौसम अपने साथ केवल हरियाली ही नहीं लाता है बल्कि परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की सौगात भी लेकर आता है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट, छत पर गिरती बूंदों का मधुर संगीत और घर के भीतर अपनों को साथ, ऐसे यदि बच्चों को एक सुंदर सी कहानी सुनाई जाए तो यह पल जीवन भर की स्मृति बन जाता है। जी हाँ बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों को कहानी जरूर सुनाएं। इस विषय पर बहनों, केवल कहानी समय बिताने का साधन नहीं है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति को पंख देती है, उनके मन में एक अच्छे संस्कारों के बीज बोती हैं, भाषा को समृद्ध बनाती हैं और पारिवारिक रिश्तों में अपनापन घोलती हैं। बहनों, हर रात सोने से पहले केवल 10 से 15 मिनट कहानी बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कहानी केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि बच्चे भी सुनने की क्षमता बढ़ती है, कल्पना शक्ति को विकसित करती है, अच्छे संस्कार देती है, तनाव कम करती है और साथ ही अच्छी नींद में मदद करती है और पुस्तकों से दोस्ती करवाती है। बहनों, आखिर हम कहानी क्यों सुनाएं? क्या आपने कभी सोचा है? आपने देखा होगा, जब आप और हम छोटे थे तब दादा दादी या नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और हम बड़े ध्यानपूर्वक उस कहानी की कल्पना में उड़ान भरने लगते थे। ऐसा लगता था मानो हमें उस कहानी की किरदार हों। लगता है आज फिर आप और हम अपने बचपन में चले गए, है ना? तो बहनों, यह कल्पना शक्ति बच्चों को कहानियाँ सुनाने में बढ़ती है क्योंकि बच्चे जब कहानियाँ सुनते हैं तो वे शब्दों को समझना, धैर्यपूर्वक सुनना और सीखना सीखते हैं और यही आदत आगे चलकर उनकी पढ़ाई, भाषा और व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनती है। बहनों, वैसा देखा जाए तो मोबाइल की स्क्रीन में मिलने वाला मनोरंजन कुछ समय का होता है लेकिन कहानी बच्चों के मन और विचारों में लंबे समय तक रहती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि माँ हो या दादा दादी हो या नाना नानी हो या घर के कोई भी सदस्य हो, बच्चों को अपनी खाली समय में मनोरंजक और ज्ञान भरी कहानियाँ बच्चों को जरूर सुनाएं। अक्सर हम देखते हैं कि कई घरों में महिलाएं अपने व्यस्त दिनचर्या में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं जिससे बच्चों में कहानी सुनने की आदत तो पड़ती है लेकिन कुछ समय तक शांत तो रहते हैं लेकिन उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होता है जिसे हम समय रहते नहीं पहचान पाते। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो उसके साइकोलॉजी को, जिससे वो उग्र होने लगते हैं, धैर्य खोने लगते हैं और साथ ही जिद्दी प्रवृत्ति का होने लगता है और तब हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, बदमाश हो गया है और इसकी वजह हम स्वयं होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप स्वयं बच्चों को कहानी सुनाएंगे, इससे बच्चों को आपका सानिध्य भी मिलेगा और कहानी के माध्यम से उनमें सुकून भरी नींद और संस्कार भी बनेंगे। कहानियाँ सुनाने से नैतिक शिक्षा भी मिलती है। बहनों, हर कहानियाँ अपने साथ एक संदेश लेकर आती हैं। सच बोलना, मेहनत करना, बड़ों का सम्मान करना, मित्रों की सहायता करना, प्रकृति से प्रेम करना, बच्चों जब इन बातों को कहानी के माध्यम से सुनते हैं तो वे इन्हें आसानी से अपनाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि सोने से पहले शांत वातावरण में कहानी सुनना बच्चों को मानसिक शांति देता है, इससे वे मोबाइल से दूर रहते हैं, मन शांत होता है और नींद भी बेहतर होती है। बहनों, आपने गौर किया होगा, जो बच्चा कहानी सुनना पसंद करता है वही आगे चलकर स्वयं पुस्तक पढ़ने की इच्छा भी करता है। आज जब हम बचपन की बात कर रहे हैं तो मैं अपने बचपन की बात आप सभी लोगों से साझा करना चाहूँगी। हमारे घर में उस वक्त कुल 30 सदस्य होते थे और हम सभी बच्चों का हर काम के लिए एक समय निर्धारित किया गया था और जब कहानी सुनने का समय होता तो हमारे चाचा जी हम सभी को चारों ओर घेरा बनाकर बैठा देते थे और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। कभी बंदर की, कभी शेर की और कभी कहानियाँ मगरमच्छ की होती थी और उसमें सभी को कुछ ना कुछ किरदार बना देते थे और स्वयं भी कभी राक्षस का किरदार निभाते तो कभी शेर का। और उन सभी कहानियों के लिए वो पुस्तक खरीद कर लाते। कॉमिक्स पत्रिका का जमाना था और मुझे आज भी याद है उस पुस्तक का नाम होता था चाचा चौधरी, नंदन, मोटू और पतलू, मगरमच्छ और बंदर। ऐसी कई पुस्तकें होती थीं जिसे देखकर और सुनकर हम सभी को पुस्तक पढ़ने और चित्रकला के प्रति रुझान बढ़ते गया। और आज मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ और मेरी बहन कवित्री है और चित्रकारी तो उसके बाएं हाथ का खेल है। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य यही नहीं कि आज ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं और हमें फिर से इसे अपने संस्कार में लाना होगा, बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, उनकी परवरिश

0: भविष्य में रिश्तों के प्रति एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी रिश्तों के प्रति उनमें लगाव होना चाहिए। तो बहनों, इसके लिए सबसे अच्छी पहल ये है कि हम घर के छोटे से कोने को एक लाइब्रेरी का रूप दे दें, ताकि बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदतें बनी रहें। बहनों, कहानियों की बात चली है तो चलिए आज हम आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह रोज नए नए पेड़ों पर उड़ने का अभ्यास करती थी। एक दिन तेज हवा चली, कई पक्षी डर कर अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन छोटी चिड़िया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं उड़ने की कोशिश करूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, डरना बुरा नहीं है, लेकिन डर के कारण कोशिश छोड़ देना ये ठीक नहीं है। चिड़िया धीरे धीरे उड़ने लगी। हवा तेज थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद वह सुरक्षित वापस अपने घोंसले में आ गई। उस दिन से उसे समझ में आ गया कि आत्मविश्वास और अभ्यास से हर कठिनाई आसान हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि डर से नहीं बल्कि साहस और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। बहनों, इस तरह आप प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट बच्चों के साथ बिताएं, उन्हें कहानी सुनाएं, फिर उनसे ये पूछिए कि कहानी का अच्छा पात्र कौन था, आपने क्या सीखा, यदि आप उस कहानी में होते तो क्या करते। बहनों, इस बच्चों की सुनने की, सोचने और बोलने की जो क्षमता है तेजी से विकसित होगी और वो कहानी अच्छे ढंग से सुन पाएंगे। तो बहनों, अब चलिए चलते हैं स्टूडियो में और सुनते हैं विजय लक्ष्मी जी को, जो आज का हमारा क्रम है लोक संस्कृति, और लोक संस्कृति पर यह आधारित भरथरी गीत पर है। तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम। बहनों, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति अपनी सादगी, सहजता और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। यहाँ का लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जनजीवन की भावनाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों के सशक्त वाहक भी है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में यहाँ की मिट्टी की खुशबू, लोक जीवन की सरलता, प्रकृति के प्रति प्रेम तथा सामाजिक समरसता का सुंदर चित्रण मिलता है। जहाँ हम ददरिया, सुआ, कर्मा, बांसगीत, भरथरी जैसे अनेक लोकगीत परंपराएं आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इन गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए इसी विशेष क्रम में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की परंपरा, उसके महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी जी, जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं और लोक कला मंच की अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले तो विजय लक्ष्मी जी, हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमें अपने बारे में और अपने बचपन की गांव की संस्कृति स्मृतियों के बारे में कुछ बताएं।
1: जी, मैं विजय लक्ष्मी शर्मा, अभी मेरा निवास स्थान 27 खुरली बिलासपुर है। मैं शुरू से ही गायकी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी से मैंने गायकी सीखी है। मेरे पिताजी गाते थे, बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाते भी थे, उन्हीं से मैंने सीखा और आगे भी बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते बढ़ते मैं 1984 में रायपुर रेडियो स्टेशन की गायिका बनी, और रायपुर रेडियो स्टेशन की गायिका बनने के पश्चात मैंने अपने मंच का गठन किया। मेरे साथ कलाकार लोग काम करते हैं, जिसमें 40 कलाकार लड़के लड़कियां शामिल हैं, वाद्य बजाने वाले लोग भी शामिल हैं, और उन्हीं लोगों के साथ जा करके विभिन्न जगहों में छत्तीसगढ़ ही के साथ ही साथ अन्य गीतों का भी प्रचार प्रसार गायन हमारे द्वारा किया जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है विजय लक्ष्मी जी, आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी लोक संस्कृति के अंतर्गत भरथरी गायिका पे चर्चा करने के लिए। तो विजय लक्ष्मी जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि भरथरी गायकी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: भरथरी गायकी, चूंकि हम बहनों हम लोग गायकी से जुड़े हुए ही हैं, गायकी से जुड़े हुए होने के कारण लोक गीतों की श्रृंखला में जैसे सुआ, कर्मा, ददरिया, जसगीत, बिहाव, डंडा, ये सब चीजें आती हैं, तो उसी के साथ ही साथ उसमें पांडवानी और भरथरी गायकी भी शामिल है। भरथरी गायकी के समय में यदि किसी को आवश्यकता हुई या किसी ने कहा कि भरथरी गायकी यहाँ करना है, तो भरथरी गायकी से उसका अध्ययन करके हम लोग जुड़ते चले गए और भरथरी गायकी को भी हमने अपने मंच पर स्थान दिया, उसकी प्रस्तुति की, उसका प्रचार प्रसार आज तक करते आ रहे हैं।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है विजय लक्ष्मी जी। जैसे अभी आपने कहा कि आपके साथ 40 लोगों की टीम है और आप लोक कला मंच से जुड़ी हुई हैं और लोक संस्कृति को एक नई दिशा, एक सम्मान संरक्षण की ओर अग्रसर हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे आपने कहा कि मैं भरथरी गायकी से जुड़ी हुई हूँ, ये भरथरी गायकी क्या है और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में इसका क्या महत्व है?
1: भरथरी गायकी लोक गाथा है
0: जी।
1: इसमें उज्जैन के राजा भर्तृहरि के वैराग्य मार्ग पर जाने, रानी

0: पिंगला के प्रेम और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने की मार्मिक कथा गाई जाती है। ये गाथा जो है वो सांसारिक मोह माया से त्याग करके सत्य की खोज के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में भी यह लोगों को बहुत प्रिय है और वो बहुत जुड़ाव के साथ इन गानों को सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नाथ पंथ का गहरा प्रभाव रहा, क्योंकि नाथ पंथ के लोग ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के होते थे और ये यात्रा पर उज्जैन जाते थे। उज्जैन जाते समय छत्तीसगढ़ के लोग भी उज्जैन जाते थे
1: जी,
0: और उनके साथ मिलते थे। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से भर्तरी जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को योगियों के से मिलने के कारण
1: जी
0: आया और यहाँ की परंपरा में रच बस गया
1: जी,
0: और ये हमारी धरोहर भी बन गई। मौखिक रूप से यदि माने तो हमारे साहित्य का एक अभिन्न अंग बन गया, एक स्तंभ बन गया। अक्सर सारंगी और एक तारा के साथ सुमधुर धुन में गाया जाने लग गया और एक दूसरे से गुरु परंपरा में इसे सभी लोगों ने सीखना चालू कर दिया
1: जी। ये तो काफी अच्छी बात है कि ये जो हमारी लोक गीत है ये मतलब उज्जैन और राजस्थान से चलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ तक आई और हमारी ये पहचान बन गई। विजयलक्ष्मी जी, जैसे अभी आपने कहा कि भर्तरी गायकी से आपका जुड़ाव है, तो मैं जानना चाहूंगी कि भर्तरी गायकी आखिर है क्या और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में इसका क्या महत्व है?
0: गीता जी, जैसे मैंने अभी कहा कि भर्तरी गायकी जो है वो लोक गाथा है
1: जी,
0: जिसमें राजा भर्तरी के संन्यास की कथा मुख्य है। उसमें वो घर छोड़ करके चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, सांसारिक मोह माया का त्याग करते हैं, उसी कथा को गायकी के रूप में बना करके गाया जाता है
1: जी।
0: तो इस क्षेत्र में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से इस भर्तरी लोकगीत को लाने वाली और उसे शुरू करने वाली श्रीमती सुरुजबाई खांडे, सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बिलासपुर की हैं और उनके साथ हमारा उठना बैठना आना जाना और साथ में गाना भी हुआ है
1: जी।
0: ये बहुत अच्छी बात है और अभी काफी लोग इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं जो केवल भर्तरी गायन कर रहे हैं
1: जी।
0: उसमें रेखा जल छत्री जी हैं, हेमलता हैं और सूरजबाई खांडे के साथ ही साथ कणिका साहू
1: जी,
0: वो बहुत अच्छे तरीके से भर्तरी गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं
1: जी।
0: सूरजबाई खांडे से बहुत कुछ सीखा क्योंकि उनके साथ जो जब वो अपने घर में रहती थी तो जब वो प्रैक्टिस में बैठती थी अपने अन्य कलाकारों के साथ तब भी हम लोग बैठते थे और उनसे सुनते भी थे और वहाँ गाते भी थे, कुछ तो चार लाइनें हम लोग भी गाते थे। तो गीता जी, हमने ना उनसे बहुत कुछ सीखा भर्तरी के बारे
1: में। तो विजयलक्ष्मी जी, कोई ऐसा पल जिसे आप हमारे श्रोता सखियों से साझा करना चाहेंगी जो बहुत काफी रोचक भी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो
0: जी? जब भी सुरुजबाई दीदी मिलती थी तो बहुत प्यार से मिलती थी
1: जी,
0: और कभी भी बिना चाय पिलाए या बिना हमारे साथ बैठे चाहे कितनी भी व्यस्त हो, विजयलक्ष्मी दीदी आई है करके बैठ जाती थी। उनके साथ रहना गीता जी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत सरल स्वभाव की थी, छत्तीसगढ़ की थी
1: जी।
0: और कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो उसी तरीके से वो मिलती थी, बहुत प्यार से मिलती
1: जी।
0: तो उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगा। कुछ महोत्सव में हम लोग गए हैं जहाँ पर खाने पीने की सुविधा असुविधा ये सारी चीजें साथ में झेले हैं, पर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए, अपनी व्यवस्था खुद कर लिए, अपने कलाकारों की व्यवस्था कर लिए, इस तरीके से हम रहे
1: जी। यानी कि विजयलक्ष्मी जी, आप एकदम काफी इंजॉय करते हुए उनके साथ समय बिताई और काफी कुछ उनसे आपने सीखा।
0: हाँ
1: जी, ये तो रही कि भर्तरी गायकी से आप कैसे जुड़े और क्या इसका छत्तीसगढ़ में महत्व है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि इसकी शुरुआत कब से हुई है और ये इसकी परंपराएं कब से चली आ रही है, ये मैं जानना चाहूंगी।
0: आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि भर्तरी गायकी की शुरुआत कब से हुई और इसकी परंपरा कैसे अभी तक चल रही है
1: जी।
0: बताना चाहूंगी बहनों को, नौवीं और दसवीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है जब उत्तर भारत में नाथ संप्रदाय का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। इसी समय इसी कालखंड में भर्तृहरि ऐतिहासिक चरित्र के रूप में सामने आए। लोक कथाओं के अनुसार उज्जैन के राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे
1: जी।
0: लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि रानी पिंगला के प्रति उनका जो मोह वो भंग, उनको समझ में आ गया कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है और इसमें मोह माया में कभी भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि मोह जो है माया जो है एक दिन भंग हो जाता है और लोगों को दिल टूटने का खूब दुख होता है। तो उनको भी दिल टूटने का खूब दुख हुआ और वो अपने घर को छोड़ करके बिना किसी को बताए चले जाते हैं और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर के नाथ पंथ अपना करके खुद भी योगी बन जाते हैं।

0: सारा राजपाट सब कुछ अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को देकर के सौंप दे।
1: ऐसा क्या हुआ होगा राजा भर्तृहरि के जीवन में कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के मोह माया त्याग दी, ये मैं जानना चाहूंगी।
0: जैसा कहा जाता है कि पहले के राजा लोग काफी तपस्या करते थे, ऐसे भी थोड़े धार्मिक स्वभाव के होते थे, तो धार्मिक स्वभाव के होने के कारण उनके पास भी एक अमर फल की कहानी आती है कि उनको राजा भर्तृहरि को एक अमर फल मिला। अमर फल ऐसा फल था जिसको खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था
1: जी।
0: तो उनको लगा कि मैं अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ही अमर फल उसको ले जा करके दे दूं। उन्होंने अपनी पत्नी को अमर फल ले जा करके दे दिया। उनकी पत्नी ऐसी थी कि वो घोड़े की सेवा करने वाले को बहुत प्यार करती थी
1: जी।
0: उनको लगा कि घोड़े की सेवा करने वाला अमर हो जाए, उन्होंने घोड़े की सेवा करने वाले को ये फल दे दिया। तो अब घोड़े की सेवा करने वाला भी एक ऐसा व्यक्ति निकला जो नर्तकी को प्यार करता, राजा की नर्तकी को। उन्होंने जाकर के राजा नर्तकी को फल दे दिया, जैसे नर्तकी अमर हो जाए। ऐसे होते होते होते राजा की नर्तकी राजा को प्यार करती। अब हुआ ये कि नर्तकी ने बहुत प्यार से वो फल फिर से राजा को दे दिया, क्योंकि नर्तकी को पता ही नहीं था कि ये फल राजा ने ही दिया है। तो वो नर्तकी को लगा कि राजा अमर हो जाए। ये सारी घटनाएं राजा जब देखते हैं कि ये इसका जुड़ाव कैसे हुआ, कहाँ से आया ये फल मैं किसे दिया था, तो उनका जो मोह है वो पूरी तरह से भंग हो जाता। वो समझ जाते हैं कि संसार नश्वर है, इसमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। मुख्य रूप से जो है वो ईश्वर ही है, और हमें ऐसे मार्ग पर जाना चाहिए जहाँ हम सत्य की खोज कर सकें। सत्य क्या है उससे जुड़ जाए, फिर वो संसार का मोह माया का त्याग करके अपने राजपाट को छोड़ देते हैं
1: जी। मतलब देखिए कि जीवन का कैसा ये मोड़ है, और उनको कैसे मोह माया छोड़ के वो योगी बन गए।
0: योगी बन
1: और आज वही भर्तृहरि हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की एक पहचान बन गई।
0: गीता जी, ये दुख की बात है
1: जी
0: कि जिसको भी संसार में हम लोग बहुत प्यार से चाहते हैं, वो ऐसा है कि वो कभी हमारा होगा नहीं। ये निश्चित है कि संसार में मोह माया जो है वो भंग होता ही है। और गीता जी, इसका मुख्य संदेश भी ये है
1: जी
0: कि राजा भर्तृहरि के जीवन में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं से उनको पता जैसे चला कि संसार नश्वर है, उसी तरह हमको भी इस चीज का आभास होना चाहिए कि संसार जो है वो नश्वर है। सांसारिक मोह माया का त्याग करके हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि आत्मज्ञान के बिना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ होता है। आत्मज्ञान जब होता है तभी हमें पता चलता है कि हम वास्तव में शिव के अंश हैं, शिवांश हैं हम भी
1: जी।
0: शिव हम कहा जाता है ना, तो उसी तरह से जब हम आत्मज्ञान के अंदर खोते हैं, डूब जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम यूं ही भटक रहे हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो भर्तृहरि की इस कथा में ना यही संदेश दिया गया है कि सांसारिक बंधनों को काट दिया जाए और आत्मज्ञान से जुड़ जाए। गुरु की महत्ता बताई गई है, गुरु शिष्य की परंपरा का महत्व बताया गया है
1: जी। विजयलक्ष्मी जी, ये तो रही भर्तृहरि गायकी का। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि भर्तृहरि गायकी में कौन कौन से वाद्य यंत्रों को उपयोग किया जाता है
0: जी। मुख्य रूप से भर्तृहरि गायकी जो है ना वो योगियों की गायकी है गीता जी। योगी पहले उसको ना सारंगी से एक तारा से गाते थे, जैसे वो तुमा होता है ना, जिसको तुमा बोलते हैं, लौकी का गोल वाला, उसी से वो डंडा लगा करके जो बनाते थे, एक तार लगाते थे उसमें
1: जी।
0: और उसी को बजा बजा करके टुन टुन टुन टुन टुन टुन टुन टुन की आवाज उसमें से आती थी, और वो अपनी कथा अपनी धुन में मगन हो करके बजा बजा करके गाया करते थे
1: जी।
0: तो अभी इसके साथ जब थोड़ा और समय बीतता गया तो मंजीरा, खंजरी, सारंगी, ये सारी चीजें, साथ में हारमोनियम भी बजाने लग गया, बाद में फिर बेंजो का प्रयोग होने लग गया, ढोलक बजने लग गया, बहुत सारी चीजें बजने लग गई
1: जी। जी, उम्मीद करती हूँ कि श्रोता बहनें जो हमें सुन रही हैं जरूर उनको अच्छा लग रहा होगा आपकी बातों से, और जिन्हें भर्तृहरि गायकी की शौक है वो आपसे जरूर प्रेरित भी हो रही होंगी
0: जी। जी
1: जी, तो विजयलक्ष्मी जी, क्या आज के ये जो युवा है इस भर्तृहरि गायकी पर रुचि ले रहे हैं, और अगर नहीं तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: गीता जी, आधा आधा कहा जा सकता है
1: जी,
0: क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत ध्यान देते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, पुरानी चीजों को सहेज के रखते हैं, वैसे युवा जो हैं वो सीख रहे हैं। और कुछ युवा आधुनिकता से जो जुड़ चुके हैं उनको ये सारी चीजों से लगाव नहीं है, तो इनमें लगाव आना चाहिए। इनमें लगाव आए, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं
1: जी,
0: ताकि छोटे बच्चे सीख सकें, आगे उसको ले जा सकें, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को संजो करके रख सकें
1: जी। हाँ। जैसे अभी आपने कहा कि प्रयास

0: कर रहे हैं, तो आप किस स्तर तक प्रयास कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रयास से युवाओं आप तक जुड़ पाए हैं भर्तृहरि गायकी के लिए, या फिर हम यूं कहें कि लोक संस्कृति से उनका जुड़ाव में कुछ आपको असर दिखाई दे रहा है?
1: हाँ, दिखाई दे रहा है
0: जी,
1: काफी लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसे अच्छे से लेकर के सहेजना बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: इसके लिए हम मंच में जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये प्रचार प्रसार होते रहता है, ताकि लोग लोक संस्कृति से, लोक गीत से जुड़ सके
0: जी। तो विजयलक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है?
1: बिल्कुल उठा रही है
0: जी,
1: सरकार की तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा संस्कृति विभाग है
0: जी,
1: और संस्कृति विभाग हमेशा से संस्कृति का संरक्षण करने
0: जी,
1: उसका पोषण करने और उसको उत्साहित करके प्रोत्साहन पुरस्कार देने तक का कार्य करती है
0: जी।
1: और इसीलिए हमारे कलाकारों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं और देश विदेश में उनको जाने का अवसर दिया जाता है। सरकार बहुत कर रही है, पर जनता उसके पीछे आए, सारे बच्चे सीखें, ये हमारी अपेक्षा है
0: जी। बिल्कुल, कहना चाहेंगे कि जो श्रोता सख्या हमें सुन रही हैं, वो अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों तक लोक संस्कृति के लिए जागरूकता फैलाएं और उनके संरक्षण के लिए एक कदम जरूर उठाएं।
1: अपने बच्चों को सीखने की रुचि लाएं, ऐसा बहनों से मेरा कहना है
0: जी। बिल्कुल, और आपके इन बातों को जरूर अमल करेंगे हमारे श्रोता सख्या, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी जो भर्तृहरि गायिका है या लोकगीत की और भी अन्य विधाएं हैं उसको सहज और बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको संरक्षित कर सके।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: जी। विजयलक्ष्मी जी, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे श्रोता बहनों तक पहुंचाई है। अब जब हम बात भर्तृहरि की कर रहे हैं, तो क्यों ना आपके मुख से हम भर्तृहरि गायकी का आनंद लें जी।
1: चार लाइनें जरूर सुनाऊंगी।

0: या वाकई में विजय लक्ष्मी जी आपकी आवाज में काफी मिठास है और बहुत अच्छे से आपने गीत को गाया है जो दिल तक एक करुणा एक दर्द
1: जी जी जी
0: भरा गीत था जो महसूस हो रहा था कि दिल से निकल रहा है। क्या बात है,
1: सही कहा जाए तो ये थरी जो है करुण रस का ही है। लोग भाव विभोर हो जाते हैं इसे सुन करके
0: जी।
1: इसकी पूरी कथा चलती है तो जब घंटों चलती है लोग भाव विभोर हो ही जाते हैं
0: जी। नहीं नहीं बिल्कुल ये एहसास हमको हो रहा था विजय लक्ष्मी जी।,
1: जी, जी
0: जब आप ये गीत गा रही थी तो हमारे हृदय में भी एक मतलब करुण रस एहसास हो रहा था कि बड़ी दुख भरी गीत है जिन्हें गाया जा रहा है। और ये आज आपसे मुख से सुन के मुझे पता चला कि ये भर्तृहरि गायकी ही है जो कि करुण रस पे गाया जा रहा
1: है।
0: जी जी
1: जी
0: बिल्कुल काफी अच्छा गीत रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी श्रोता सखिया है उन्हें भी आप
1: जरूर पसंद करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे भी और आगे बढ़ाएंगे भी और खुद भी रुचि लेके आगे आएंगे
0: जी। तो अंत में हमारे श्रोता सखियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं विजयलक्ष्मी जी?
1: संदेश यही है कि मोह माया में ज्यादा उलझना सचमुच सही नहीं है। इस दुनिया में जब तक हैं खुशी से रहें, खुशियां बांटें, खुद ही खुश रहें और खुशी से खुशी अपनी जिंदगी जिएं। साथ ही साथ अपने देश की सभ्यता संस्कृति को कभी न भूलें और बहुत आगे ले जाएं ताकि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, पोषण हो और आगे जा करके बच्चे इसे हमेशा आगे बढ़ाते रहें। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही पूरी दुनिया में अमर है और अमर रहे।

0: रहेगी। और नारी शक्ति से पूरा जीवन चलता है, तो नारी शक्ति ही सशक्त होकर के अपने बच्चों को संरक्षित करके संस्कृति को भी रखने के लिए प्रेरित करें
1: जी। वाकई में विजयलक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता बहनों तक पहुंचाई है, और उन्हें संरक्षित करने के लिए जो जगह जगह आप कार्यक्रम करते हैं वो काफी सराहनीय है। और बहनों, यह गीत न केवल लोक मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समाज की संस्कृति, चेतना और लोक मूल्यों को भी जीवित रखता है। तो विजयलक्ष्मी जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद मुझे यहाँ बुला करके सब लोगों तक मेरी बात पहुँचाने के लिए।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संस्कृति, जो भर्तृहरि गीत पर आधारित था, और वार्ताकार थी विजयलक्ष्मी, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे। प्रस्तुति और संयोजक थे मोनाली ठाकरे की। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: बहनों, अब आइए सुनते हैं इंडियन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पर उपेक्षा शर्मा को, जो अपने विचार हमसे साझा कर रही हैं।
5: आज हम एक ऐसे दिवस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश के संचार, शिक्षा, संस्कृति और लोकतंत्र को एक मजबूत आधार दिया है। आज 23 जुलाई को राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब वर्ष 1927 में 23 जुलाई को भारत में पहली बार संगठित रूप से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई से अपना पहला नियमित रेडियो प्रसारण आरंभ किया। बाद में यही प्रसारण व्यवस्था विकसित होकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के रूप में देश की पहचान बनी, और आज डिजिटल युग में भी अपनी विश्वसनीयता के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग दिवस केवल रेडियो या टेलीविजन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे, उस संवाद और उस जिम्मेदारी का सम्मान है जिसके माध्यम से सूचनाएं, ज्ञान, संस्कृति और मनोरंजन वर्षों से लोगों तक पहुंच रहे हैं। श्रोताओं, यदि हम कुछ दशक पीछे जाएं तो पाएंगे कि एक ऐसा समय था जब ना मोबाइल फोन थे, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। उस समय रेडियो ही वह माध्यम था जिसके जरिए देश दुनिया की खबरें, मौसम की जानकारी, खेती किसानी की सलाह, संगीत, नाटक, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती थी। गाँव में चौपाल पर रखा एक रेडियो पूरे गाँव को दुनिया से जोड़ देता था। लोग समाचार सुनने के लिए समय का इंतजार करते थे। भारत में प्रसारण सेवा का इतिहास लगभग 1 शताब्दी पुराना है। वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। फिर 1957 में भारत के महान कवि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा दिया गया नाम आकाशवाणी लोकप्रिय हुआ।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे अपेक्षा शर्मा को, जो इंडियन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पे अपना विचार साझा कर रही थी। बहनों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता होता को नमस्कार।
6: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा आज रात 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात 10 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 7:20 पर आज ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ का विषय होगा, फूल के खेती ला बढ़ावा देवा। इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव के उपाय।

इस विषय पर पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक और विशेषज्ञ डॉक्टर आरएम त्रिपाठी जानकारी देंगे श्रोताओं द्वारा फोन पर पूछे गए प्रश्नों के। आज की बात का विषय होगा उद्वहन सिंचाई योजना। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7 बजे। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली हमले कराएंगे 8:15 पर। इसके बाद आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा आम की खेती। रामचरितमानस गाना आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:05 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा यादों के झरोखे से। इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:30 पर। इनसे मिलिए कार्यक्रम सुबह 8:30 पर। हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे होगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के। इसमें आप सुनेंगे ईश्वर गिरी गोस्वामी, गुलाब गिरी और साथियों से राजा मोर ध्वज का किस्सा और कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथियों से रास भजन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पसंद श्रोता सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। कल 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। इसके अलावा फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज की बीमारियों से बचाव के उपाय। जानकारी देंगे पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आरएम त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन करेंगे महंगू भैया। रजनीगंधा हम लेकर आएंगे कल 8:15 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा जगत कल शाम 5:35 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा मुश्किल घड़ी में साहस का परिचय कैसे दें। इसके अलावा क्रम होगा समसामयिकी और सवाल जवाब का भी। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा कल शाम 5:05। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार ह परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में शामिल लोगन मन ल सजा देवाए बर फास्ट ट्रैक अदालत बनाही, प्रधानमंत्री ह करीन घोषणा। कोरबा ल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ह कैच द रेन अभियान ले जोड़िन, मिशन के तहत पूरा जिला में पानी बचाए ला पहली प्राथमिकता दे जाही। और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज के दिन मुंबई ले देश के पहली रेडियो प्रसारण हुई शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह घोषणा करे है कि केंद्र सरकार ह परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में शामिल लोगन मन ल सजा देवाए बर फास्ट ट्रैक अदालत बनाही। छात्र मन के भविष्य के रक्षा करना सरकार के पहली प्राथमिकता हरे। प्रधानमंत्री के बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में दिल्ली के जंतर मंतर में चलत छात्र मन के विरोध प्रदर्शन के बीच आए। प्रधानमंत्री ह कहिन

0: कि ओमन एखर ले जुड़े अधिकारी और पदाधिकारी मन ला ए बारे में जरूरी कदम उठाए के निर्देश दे हवे। उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फास्ट ट्रैक अदालत के स्थापना के माध्यम ले पेपर लीक मामला में सुनवाई में तेजी लाए और दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कराए के प्रधानमंत्री के फैसला के प्रशंसा करे। सोशल मीडिया पोस्ट में ओमन कहिन कि युवा मन के कल्याण और उखर बढ़िया भविष्य मोदी सरकार के पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है कहिन है कि यदि कोनो परिवार के सदस्य के वैध जाति प्रमाण पत्र पहली ले जारी है तो सिर्फ बछर 1950 के दस्तावेज के अभाव में परिवार के आने पात्र लड़का मल्ला जाति प्रमाण पत्र ले अलग नहीं करे जा सके। कोर्ट है एखर ले जुड़े अधिकारी मल्ला यहू निर्देश दे हवे कि जाति प्रमाण पत्र पर पेश अर्जी के संग जरूरी दस्तावेज लेके 2 महीना के भीतर मामला के निपटारा करत जाति प्रमाण पत्र जारी करे जाए। न्यायाधीश ए के प्रसाद के सिंगल बेंच है ये याचिका के सुनवाई के दौरान फैसला लिन। उन्हें हाईकोर्ट है NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामला के जांच में पुलिस अधिकारी मंडहार ले करे जात लापरवाही ऊपर नाराजगी देतें। कोर्ट है NDPS एक्ट के एक ठिन मामला में निचली अदालत दहार ले 7 जिन आरोपी मल्ला सुनाए गए 10 ले 15 साल के कठोर कारावास और जुर्माना के सजा ल रद्द करत ये टिप्पणी करीन। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखल साहू है काली नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ले मिलिन। ये दौरान ओमन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच अब्बड़ बेरा ले चलत महानदी जल विवाद लेके गोट बात करीन। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी घलो आए रहीन। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। यही दिन बछर 1927 में मुंबई ले देश के पहली रेडियो प्रसारण शुरू हुई। ये मौका में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी है कहिन कि पाछू 99 साल में प्रसारण के विकास रेडियो ले टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हो है। आकाशवाणी समाचार ले विशेष गोटबात में ओमन कहिन कि प्रसारण भारती है देश विदेश में दर्शक मन पर हर प्रकार के मनोरंजक सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत करत रही। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पहल कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के तहत जल संरक्षण भूजल पुनर्भरण और जल निकाय मन के कायाकल्प में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाए हैं। हसदेव नदी के तट में होए के बाद जल संकट ले जूझत कोरबा ला आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है कैच द रेन अभियान ले जोड़िन। कोरबा जिला के कलेक्टर कुणाल दुदावत है बतैन कि कैच द रेन अभियान और जल संचय जन भागीदारी मिशन के तहत पूरा जिला में पानी बचाए ला पहली प्राथमिकता दे जाते है। ओमन बतैन कि जिला में ऐसो 20,000 जल संरक्षण तैयार करे के लक्ष्य रखे गए है। आज रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डहार ले पत्रकार वार्ता के आयोजन करेगी। ये मौका में विभाग के सचिव अंकित आनंद कहिन कि भारत नेट परियोजना के तीसर चरण में ग्राम पंचायत मल्ला उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क ले जोड़े जाही। ये परियोजना पर केंद्र सरकार 3,928 करोड़ रूपया मंजूर करे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़ो बांचे समाचार को थी। यूनिसेफ के रायपुर इकाई डहार ले आज राजधानी रायपुर में 1 ले 7 अगस्त तक मनाया जवैया विश्व स्तनपान सप्ताह और स्वस्थ आहार विषय ऊपर केंद्रित कार्यशाला के आयोजन करेगी। कार्यशाला के उद्देश्य स्तनपान के महत्व और स्वस्थ आहार के प्रति लोगन मन ला जागरूक करना रहीस। कार्यशाला ला संबोधित करत स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक VR भगत है बतैन कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ है पूरा भारत में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़िया प्रदर्शन करे है। उन्हें यूनिसेफ के पोषण विशेषज्ञ अपर्णा देशपांडे है घलो कार्यशाला ला संबोधित करत स्तनपान के महत्व और उखर ले जुड़े आने आने पहलू के बारे में जानबा दीन।

0: दुर्ग जिला के अदालत ने पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ 17,52,000 रुपया के कथित धोखाधड़ी के मामला में एफआईआर दर्ज करे के आदेश दिए हैं। आरोप है कि ओमन एक जिन ठेकेदार ला ओडिशा स्थित जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट के काम दिवाए के झांसा देके पैसा लीन, बाद में जांच में कथित वर्क आर्डर और आने कागजात मन फर्जी पाएगी। अदालत है मोहन नगर पुलिस ला मामला दर्ज करके निष्पक्ष जांच के निर्देश दे है। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ के पहली ऐसा जिला बन गए है जिहां डिजिटल एफआईआर प्रणाली लागू कर देगी है। जिला के जम्मू विवेचक मन अब ई साइन के माध्यम ले एफआईआर के काम पूरा करते हैं। थाना भिलई नगर में प्रार्थी के पहली ई साइन घलो करेगी। विवेचक और प्रार्थी दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर के संग एफआईआर के काम पेपरलेस हो गए है। जांजगीर चांपा जिला में पुलिस शेयर बाजार में निवेश करके रकम दोगुना करे के लालच दे के करोड़ों रुपया के ठगी करैया पति पत्नी ल गिरफ्तार कर ली है। पुलिस दोनों के तीर ले लैपटॉप टैबलेट मोबाइल फोन और चेकबुक ल जब्त कर ले है। जानबा के मुताबिक चांपा के ही रहैया हेमदत्त केसरवानी 24 मई के आरोपी मन डहार ले 2,94,00,000 रुपया ले ज्यादा के ठगी के रिपोर्ट दर्ज कराए रहीन। दुर्ग जिला के फिलाई टाउनशिप में आज बिहनिया हुए सड़क हादसा में कार में बैठे दूजिन मनके के मौत हो गई। ये घटना गुंडीचा मंडप के आगू कार के एक ठीन पेड़ ले टकराए ले हुई। उति बालोद जिला के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में एक ठीन कार अंते तंते होके बिजली के खंभा ले टकरा गए। ये घटना में इंजीनियरिंग छात्रा के मौकच में मौत हो गई और 5 जिन आने मनके मन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। उन्हें कोंडागांव जिला के गिरोला रांधन रद्दा में आज बिहनिया हुए सड़क दुर्घटना में 1 जिन युवक के मौत हो गए और 1 जिन आने मनखे गंभीर रूप ले घायल हो गए है। दंतेवाड़ा जिला के आवासीय कोचिंग संस्था छू लो आसमान के 52 जिन छात्र मन नीट यूजी 2026 के परीक्षा पास करे है, जिमा 11 जिन छात्र मन के एमबीबीएस और 11 जिन छात्र मन के बीडीएस बीएएमएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रम मन में प्रवेश पक्का माने जाते। अब थुरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी सातो विशा समाजदार ल केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निदेशक पद में नियुक्त करे है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामला में विश्वविद्यालय प्रशासन बीए एलएलबी छठवां सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा ला रद्द कर दे है। दुर्ग जिला के गांव चिंगरी में कृषि विभाग दूठिन गोदाम ला सील करके बड़ मात्रा में कीटनाशक खातु रॉ मटेरियल और पैकिंग मशीन जब्त करे है। और रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के ENT विभाग में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पाठ्यक्रम के पहली साल में प्रवेश पर 10 अगस्त तक अर्जी मंगाए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में शामिल लोगन मल्ला सजा देवाए पर फास्ट ट्रैक अदालत बनाही। प्रधानमंत्री करीन घोषणा। कोरबाला आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कैच द रेन अभियान ले जोड़ीन। मिशन के तहत पूरा जिला में पानी बचायला पहली प्राथमिकता दे जाही। और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज के दिन मुंबई ले देश के पहली रेडियो प्रसारण हुई शुरू। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए अपना फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद से। पहला गीत हमने लिया है किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कामचोर, शब्द हैं इंदिवर के, संगीत है राजेश रोशन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नानघाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत।

भाग्यश्री, टिकेश्वर, रितु। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय। कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत, रमेश साहू। कैदीमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना, चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। दिल्ली शहर से हैं आसमा परवीन, आमना, वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी। जालंधर से संदीप जटौलिया और मुंबई से अदीबा नाश, फातिमा, नासरीन अंसारी, आलिया और सबा। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री। बिलासपुर से हैं छन्नूलाल शिवा, सनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रानाज, चाहत। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। तेलंगाना भंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि। जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर। यवतमाल से पंजाब रामटेकी, यशोधरा, श्राव्या। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवर, अंबर माँ, सूरज बारीकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा। खंडवा से अब्दुल गफार डावर और उनका पूरा परिवार और सभी दोस्त। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कामचोर का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की।

इसके बाद आइए सुनते हैं ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाड़कर सरिता प्रिंस एकांश। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी मल्होत्रा डी ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बिट्टा बजाज। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान आयशा सबिया अनस रेहान। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि शीतल। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा। लक्षणपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू। और ये हैं डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी विक्रांत मोदी महेंद्र और इफ्जाल ताश। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित और हैप्पी। चिरमिरी कुरासिया कालरी से चंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद कालिंद्रे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा जसवीर जस्सी सीता गीता। रोहासी से मुकेश साहू नंदिनी मनीष मयंक जानकी। कर्मा चौक लोहारी डी ए जिला कवर्धा से अशोक कुमार लीलेश्वरी खुशांत निशांत। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका। सोंगा मगलरोड से फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी और गजेंद्र कुमार हिंश कुमार चंदन। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नावकर निर्मला विशाल। सरगांव से राजेश वर्मा हिरोमन पल्लवी राजेश्वरी। पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता। यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशनी प्रियांशी। दिल्ली से बोधराज कोरवाल कमला रानी गीतिका भानु। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत श्वेता किसुतासु अर्णवानंद सत्यमानंद। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित वायाल प्रथमेश देशमुख प्रणाली सर्वत देशमुख। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन वीना चैतन्य और

मेघा मस्किन। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफ़ी का, लिखा है अनजान ने, संगीत है ओपी नैयर का।

ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं फोन करेंगे सुनी का प्रसारण

ईमेल करें गेसुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं फोन करें गेसुनी का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी 27 जुलाई 2026 सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 के बीच। और आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुनें, आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर 2665592 और बिलासपुर का स्टडी कोड नंबर है 077752। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतज़ार। सूचना समाप्त हुई और बढ़ते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, लिखा है हजरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। गांव जाखोद से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। गांव हीरा वाले फजिलका पंजाब से सुभाष गोद्वारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी। डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया। बुल्डाना बड़सिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा, दीपाली और श्लोक। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेखर लाहबख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसम जावेद, शगुप्ता, अंजुम। राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची, प्रवीण पुजारी। बोड़सरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वीर मिट्टा, अलका मिट्ठा। बठेना से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस। लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रेमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ। सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण, विनायक सेन। कुम्हारगली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुमार। रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शायना, मंडिया। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमिता होजा। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार, सलमानी, नौशाद और आलिया आयान। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जानवरों को शिकारियों से बचाने अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य मिलकर काम करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था और कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में टाइगर और अन्य जंगली जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए अब तीन राज्य मिलकर काम करेंगे। इसे लेकर बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के वन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में टास्क फोर्स के गठन के साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेट्रोलिंग किए जाने पर रणनीति बनाई गई। वहीं नवंबर दिसंबर महीने में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इंद्रावती टाइगर रिजर्व नक्सल संगठन के बड़े लीडरों का ठिकाना हुआ करता था। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पर्यटकों को यहां लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चल रहे महानदी जल विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी भी उपस्थित थे। इसके अलावा श्री साहू ने केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी परिवार के सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से जारी है तो केवल वर्ष 1950 के दस्तावेजों के अभाव में परिवार के अन्य पात्र बच्चों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जाए और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। न्यायाधीश ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। वहीं

0: हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और उदासीनता पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह लापरवाही केवल संयोग या अनजाने में हुई चूक नहीं हो सकती, यह जांच में गंभीर लापरवाही और पुलिस के गैर पेशेवर रवैये को दर्शाती है, जिससे एनडीपीएस कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा 7 आरोपियों को सुनाए गए 10 से 15 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूत किया जा रहा है। आज रायपुर में राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सेवा सेतु पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले 2.5 वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 78 लाख से अधिक का निराकरण किया जा चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में जनवरी 2024 से अब तक 1,273 मोबाइल टावर शुरू किए गए हैं। भारत नेट फेज 3 के लिए 3,928 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन और 4 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में बताते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ता हैं और यह तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संगठन नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके दर्शकों को उनकी पसंद के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराना जारी रखेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के तहत जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के कायाकल्प में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हसदेव नदी के तट पर स्थित होने के बावजूद जल संकट से जूझ रहे कोरबा को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान से जोड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 अति संवेदनशील स्थानों की मैपिंग के दौरान कोरबा की पहचान की, जहां जल स्तर काफी नीचे चला गया था और बारिश के मौसम में पानी नालियों से बहकर व्यर्थ ही नदी में चला जाता था। कोरबा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि कैच द रेन अभियान और जल संचय जनभागीदारी मिशन के तहत पूरे जिले में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
1: कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत पूरे जिले के अंतर्गत छोटे और बड़े वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इसमें रेन वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें विभिन्न शासन की योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से बीवीजी रामजी योजना के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्ट्रक्चर्स का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार के निर्देशन में मोर तरिया आय का जरिया कैंपेन के तहत विभिन्न स्थानों में जन भागीदारी के तहत भी डबरी सेंक्शन किए गए हैं, जिसमें कि वाटर स्ट्रक्चर को कंजर्व किया जा सके। जो शहरी क्षेत्र हैं, शासकीय कार्यालय हैं, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग युक्त बनाया जा रहा है।
0: यूनिसेफ की रायपुर इकाई द्वारा आज राजधानी रायपुर में 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह और स्वस्थ आहार विषय पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्तनपान के महत्व और स्वस्थ आहार के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक वी आर भगत ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ ने पूरे भारतवर्ष में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं यूनिसेफ की पोषण विशेषज्ञ अपर्णा देशपांडे ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्तनपान के महत्व और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप में आज तड़के हुए सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा गुंडीचा मंडप के सामने उस समय हुआ जब कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पुणे हटिया सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म में गिरने से घायल एक व्यक्ति

की मौत हो गई। उधर बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में इंजीनियरिंग छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर कोंडागांव जिले के गिरोला रांधन मार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए एलएलबी 6वें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार के आरोप में दुर्ग के पतोरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक ममता शांडिल्य को निलंबित कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच देकर करीब 3 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। रायपुर रेल मंडल में पारा और हदबंद स्टेशनों के बीच मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके कारण आज सुबह 8 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक इस रेल फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। जांजगीर चांपा जिले में आज एक निजी औद्योगिक संस्थान में हुए हादसे में 3 मजदूर झुलस गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भिलाई रेफर किया गया है। और रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जानवरों को शिकारियों से बचाने अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य मिलकर काम करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये गीत। लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आरडी बर्मन का, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगरों से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक, दुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिठा और परिवार के सभी सदस्य, बठेना पाटन जिला दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा धनेश्वरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुरलाल अविराज, लुत्रा खमरिया से हैं अकरम अमीन अर्श और आतिका, सनावा से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक जयश्री, ऋषभ और ऋचा, भिलाई

हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रेमिला आसमा श्याम कुंवर, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी, नवगढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार, रुद्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद आशीष, तिवर्ता डब्बीपारा कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष रामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य, बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता, पुतकी कला कवर्धा से राधे श्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं फोन करें गीत सुनी का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी 27 जुलाई 2026 सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 के बीच। और आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 2665 92 और एसटीडी कोड नंबर है 07752। सूचना समाप्त हुई। ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू का ये गीत। संगीत है राजेश रोशन का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। करनाल से हैं सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। गंडाई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। बागबाहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा कौशल। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विष्णु और परिवार के सभी सदस्य। पांडरकवडा से हैं अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री। खोंथला उदयपुर सरगुजा से है जीवधन सिंह, पैकरा, घुड़नी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या। जालंधर से संदीप, मक्कर, ज्योति, मन्नत और भरत, साथ में है कमल साहनी। पोड़ी भाटा अकलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोवाराम, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल। पैठण से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया। अकोला से सुशीला, देवी मंदुरकर, सदरन, गौरव, आरव और अर्पिता। रजौनी जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय, भान, पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश, मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डाली, कबीर, देवशंकर। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र। सहारनपुर से सुरेश, नारंग, आशु,

और सोनाली, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर, मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। ये हैं सहारनपुर से सुरेश नारंग, सोनाली और परिवार के सभी सदस्य। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द। पुरानी भिलाई से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुद्दीन जीशान, अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सेठी दीवाना। जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह और ओबेराय। झज्जर हरियाणा से हैं बेटू भाटिया। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बाबू का ये गीत।

लीजिए आप सुनिए, ईमेल करें गीत सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी दिशा। महसौल सीतामणि बिहार से हैं मुसर्रत जहां, नाज तलत फरहत और परिवार के सभी सदस्य। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोटखे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े। भुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से हैं परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम, नमन दमन अभिजोत। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री, प्रतीक कुमार। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति। समडेल नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल, उमा। देवरी भाटापारा से गनुलाल, रजक, के आर साहू, अश्विनी, गणेश राम। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी। धाड़ी नांद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मासूम का गीत। आवाजें हैं अभिजीत साधना सरगम की, आनंद राज आनंद का संगीत है।

फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मन के स्वागत थे। राम सनी भे के झुकाओ, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, बड़ खुशी की बात आए कि आज के समय में घरों घर में फटफटी हवा है।

0: कार है, चरचकिया गाड़ी के भरमार है। वो हम सब संगी संगवारी या घर परिवार के सदस्य मन के संग मा सफर करथन। संगी हो, अभी बरसात के समय मा हमर कतको जिन संगवारी मन रद्दा मा पैदल रेंगत रथे, पढ़िया लइका मन पैदल रेंगत रथे, हाट बाजार जवैया संगवारी मन पैदल रेंगत रथे। और संगवारी हो, बरसात के कारण सड़क मन कतको जगह हर खचवा हो जाए थे, कतको जगह हर डबरा हो जाए थे। तो हमार बहुत जिन संगवारी मन जिन मन फटफटी या चरचकिया के चढ़िया संगवारी मन खचवा डिपरा की चेतनी करन। और अभी बरसात की बेरा मा खचवा मा गाड़ी के चक्का ला दौड़ा देथन। त रद्दा के खराब पानी मन, चिखला पानी मन रद्दा रिंगैया मनखी मन के ऊपर मा छिटक के पर जाते। रद्दा रिंगैया संगवारी मन के ऊपर मा जब गंदा पानी मन चिटक थे, तब मनखे मन के मुंह कान मन चिखला वाला पानी मन सना जाते। कपड़ा मन गंदा पानी मन सना जाते। और जेकर भी साथ ये घटना घटते, उनका अंतर मन लज्जा जोड़ देते। तो संगवारी हो, गाड़ी चलाए के बेरा मा हम चेत करी कि हमर गाड़ी चलाए ले कोनो ल कोनो प्रकार की तकलीफ झन होए, कोनो के ऊपर मा चिखला मन झन पड़े, चिखला वाला पानी मन झन छिटके, कोनो ल कोनो प्रकार के नुकसान झन पहुंचे, ये बात के हम चेक करी। संगवारी हो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। त कोई भी ला पीड़ा पहुंचाए ले हमार ल सुख नहीं मिल सके, तो हम कोशिश करी कि हमार द्वारा कोनो भी ला पीड़ा झन पहुंचाए। चेत कराओ और सावचेती पूर्वक गाड़ी चलावाओ, खुद सुरक्षित रहो और सामने वाला संगवारी मल घलो सुरक्षित रखो। अब आवाज सुनथन ये संदेश आला।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो, अभी हम सुनें संदेशा ला। और संगवारी हो, कुछ बच्चर पहले हमार खेती किसानी में बहुत कुछ बदलाव आए हवे। हमार किसान भाई बहनी मन पारंपरिक खेती के संगे संग में व्यवसायिक खेती घरों में चेत करत हवे, जैसे कि मछली पालन, कुकरी पालन, डेयरी पालन, पुटू उत्पादन, फूल के खेती सहित अडवर प्रकार ले व्यावसायिक खेती में चित करत हो। संगी हो, आज के समय में फूल के अड़बड़ महत्ता हवे। पूजा पाठ करे के बेरा में हम फूल ला देवता में चढ़ाथन, बर बिहाव के बेरा में या कोई भी त्योहार बार के समय में उत्सव में फूल के सजावट के संग संग में पहुना मन के स्वागत में भी फूल की जरूरत पड़ते। राजनीति में नेता मन के स्वागत करे बर जहुआ जहुआ फूल की जरूरत पड़ते। अब आजकल तो श्रद्धांजलि सभा घरों में फूल की जरूरत पड़ जाती। तो संगवारी हो, आज बाजार में फूल के मांग घर बढ़ते जावत थे। तो ऐसा समय में हमर किसान भाई बहनी मन इकर बर फूल की खेती एक बहुत बढ़िया बेहतर विकल्प हवे। लंबा समय तक ताजा और सुगंधित रह के सेतिर बुके से लेके

माला के रूप में शादी या कोई भी कार्यक्रम में एकर बहुत ज्यादा उपयोग हर हुआ जाते। रजनीगंधा फूल के सेंट बनाए जाते जिन हर बहुत ज्यादा महंगा में मिलते। तो हमार संगवारी मन रजनीगंधा के खेती कर सकत हो। संगी हो फूल मन के पेड़ मन ला बहुत ही आसानी ले उगाए जा सकते है जिन मन आनी बानी के रंग में फूल थे। रंग बिरंगी फूल मन दिखते एकर सेती मनमोहक लगते जेकर सेती हमर जम्मो फूल मन मनमोहक लगते। संगवारी हो बारह महीना में गुलाब फूल के खेती कर सकत हो। और गुलाब के बहुत प्रकार के किस्म पाए जाते तो जिसना प्रकार के भी किस्म के आप ल खेती करना है आप वो किस्म के चयन कर सकत हो। गुलाब फूल के खेती करे बर जल निकासी वाला भुइयां ल उत्तम माने गए है। और आधुनिक तकनीक के लिए खेती करके आप अपन आर्थिक स्थिति मजबूत करत हो। ग्लेडियस एक बेहद लोकप्रिय फ्लावर आए। ग्लेडियस के बाजार में बहुत ही ज्यादा मांग रहते। ग्लेडियस के पौधा मन 3 महीना में तैयार होके फूले लगते। संगवाली हो गुलदावली के पौधा ला बरसात में लगाए जाते और गुलदावली एकर पौधा मन दिवाली के आसपास में बढ़िया फूले लगते। संगवारी हो अपराजिता फूल के बुआई बीजा के द्वारा होते। अभी के समय में अपराजिता फूल के बीजा के बुआई कर सकत हो। जल निकासी वाला दोमट माटी ला अपराजिता फूल के खेती करे बर उत्तम माने गए है। अपराजिता एक नार वाले पौधा है। तो संगवारी हो नार वाले पौधा के कारण एमा ढेघरा के सहारा देना ज्यादा अच्छा रहते। संगवारी हो गोंदा फूल के खेती ला जमो प्रकार के भुइया में करे जा सकते। तभो ले जिन भुइया में पानी निकासी की व्यवस्था होते तेन आउ दोमट या बलुई दोमट वाला भुइया ला गोंदा फूल के खेती करे बर उत्तम मान जाते। एकर खेती करे बर माटी पलटे वाला नांगल ले 2-3 बाव गहरा जुताई करना चाहिए। संगे संग में कुपर चला के जमीन ला बराबर कर लेना चाहिए ताकि बड़े बड़े ढेला मन फूट जावे। संगवारी हो गोंदा फूल के तो ऐसे बहुत प्रकार के किस्म हावे। तब ले 2-4 किस्म का नाम बताए थो। पूसा नारंगी, पूसा बसंती, अलास्का फायर ग्लो, गोल्डन एज, गोल्डन जुबली, सुपर चीफ, अपोलो, फर्स्ट लेडी, ऑरेंज लेडी, नाटी मेरी यता, सन्नी बोलेरो, ये प्रकार के बहुत अनेकर किस्म पाए जाते। तो ये प्रकार के संगवारी हो गोंदा फूल के भी खेती कर सकते हो। संगवारी हो वैसे तो जम्मो प्रकार के फूल के खेती हर जम्मो प्रकार के भुइया में करे जा सकते। तभो ले जिन भुइया में पानी निकासी की व्यवस्था होते तीन भुइया में और दोमट या बलुई दोमट वाला भुइया ला जम्मो प्रकार के फूल के खेती करे बर उत्तम माने गए। संगवारी हो फूल के खेती करे बर सरकार हर सब्सिडी घलो देते। एकर बर हमर किसान भाई बहनी मन कृषि विभाग के वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकत हो। उकर बाद में उद्यान विभाग ले संपर्क करके आवेदन कर सकत हो। और जिन भी प्रकार के आप लोग फूल के खेती करना है तो उद्यान विभाग के संपर्क करके आप फूल के खेती कराओ और अपन आर्थिक स्थिति मजबूत कराओ। और अब चलिए हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में आगे बढ़िए।

संगवारी हो, हम पहुंच गए अपन मयारू कार्यक्रम किसानवाणी में। तो किसानवाणी कार्यक्रम सुनिए, जमो संगवारी मन के स्वागत है। राम सनी भैया के झोंकाओ, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज आप सब अगोरा था फोन इन कार्यक्रम के, तो आओ अपन भले क्या थन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, जेकर विषय हवे वर्षा ऋतु में पशुओं मन में होने वाला बीमारी आओ ये बीमारी ले बचाव के उपाय। अब ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ हवे डॉक्टर आर एम त्रिपाठी, संयुक्त संचालक कृषि चिकित्सा सेवाएं मुंगेली, और ये कार्यक्रम का संचालन करते हमारे मंगू भैया। तो आवाज सुनाथन फोन इन कार्यक्रम।

0: फोन इन कार्यक्रम में आप जम्मो संगवारी मन के स्वागत हवे। महंगू भैया के राम राम जय जोहार। आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय हवे वर्षा ऋतु में पशु मन में होइया बीमारी और ओकर बचाव के उपाय। आज ये विषय में जोन भी आप मन के फोन के माध्यम ले समस्या आई जेकर समाधान करे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर आर एम त्रिपाठी जी मन जोन हवे उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली में। तो सबले पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर आर एम त्रिपाठी जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे। आप मन ला राम राम।
1: राम राम मगु भैया सबो किसान भाई मन का मोर राम राम।
0: हाँ, सबले पहले जानना ये चाहतन डॉक्टर साहब की जोन बरसात के मौसम में ये पशु मन में होइया कौन कौन से ऐसे रोग है जला आप बताओ।
1: हाँ भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बरसात में तीन चार बीमारियां जो हमारे दुधारू पशु होते हैं, गाय बैल होते हैं, भैंस होती हैं, इसमें होती हैं, जिसमें एक है गलघोंटू जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में बघर्रा कहते हैं, और दूसरा होता है एक टंगिया, और तीसरी बीमारी होती है इसमें एंथ्रेक्स जिसे छई रोग भी बोलते हैं, और चौथी बीमारी अभी तीन चार साल से लगातार हो रही है जो ज़्यादा बरसात क्षय और मक्खी के बहुतायत से और हो जाने से, मक्खी काटने से एक से दूसरी भी उसमें फैलती है, इसे लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। तो ये चार ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी हैं जो पशुओं में इसमें होती हैं, और जो बकरी और भेड़ होती है इसमें दो बीमारियाँ और होती हैं, एक होती है इंट्रोटॉक्सिमिया और दूसरी होती है इसमें आपके PPR। कुछ जानवरों में अपने जो ये गाय भैंस होते हैं इसमें बरसात के ही सीजन में जो मक्खियों को काटने से फैलती है, हालांकि ये संक्रामक नहीं है लेकिन ये पैरासिटिक बीमारी से ट्रिपनोसिफिस कहते हैं और लोकल भाषा में इसको घुमर्री बीमारी बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा, भौरी
1: भौरी।
0: अच्छा, ये तो आप बीमारी के नाम बता दिया। हमारे पहली कालर जुड़त हुए अब उनकर का समस्या है तेकर बरसात के मौसम में ये देखे जाते कि हमारे किसान भाई मन खास करके अभी के समय में जो उनकी टीकाकरण की बात करते हैं हमन
1: जी,
0: तो ये टीकाकरण के जो समय है ये सब बीमारी के टीका निकले हवे ओकर समय का है डॉक्टर साहब अभी हवे का समय?
1: एक्चुअल में बहुत अच्छा ये प्रश्न आपने किया है। ये बरसात की में जो बीमारियां होती हैं इसका जो टीकाकरण है बरसात पूर्व होना चाहिए और ये मई के अंत से और जून के प्रथम सप्ताह तक में इसको कम्प्लीट कर लेना
0: चाहिए। ये हमारे पहली काला जुड़त हमें कौन बोला था, कहाँ ले बोला था जी?
2: अभिषेक योगेश जांगड़े बोला था, हम सिरवा बांध हवे में तरह ले।
0: योगेश जांगड़े जी, आप मन के हमारे ये फोन इन कार्यक्रम में स्वागत हवे। ये बताओ कि आप मन का मवेशी गाय गरुआ पाले हो?
2: हवे घर में भैया।
0: कै ठक जानवर है अपन पास?
2: वो है कम से कम 20 ठन है भैया, गाय बछड़ो वगैरह।
0: बढ़िया, अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
0: तो समस्या तो आत हुई, का समस्या है तेला बताओ अपन?
2: समस्या तो यही रहते भैया बरसात के दिन में कि हम ओकर जेन रख रखाव है ओकर खान पान के जेन व्यवस्था है ओला कैसे ढंग ले करे सकत हन। हाँ, काबर पानी वानी बहुत चुहते और हमरे जैसन जैसन और बहुत जन साथी है जन मन घास फूस झोपड़ पट्टी में गाय गरुआ मन ला रखते, तो एकरे थोड़ा से बढ़िया उपाय बताओ ताकि जन पैर में गोखरू वगैरह जन नहीं बोलता है। हाँ, एकरो मन के थोड़ा से बता दे।
1: जांगड़े जी, आपने प्रश्न तो अच्छा किया है। ये जो बीमारियों के बारे में बता रहा था, एक्चुअल में जो बरसात में बीमारी होती है जैसे गलघोंटू है जैसे बघर्रा कहते हैं, उसके संबंध में यदि आपके यहाँ ऐसा कुछ तो आप टीकाकरण जरूर करवा होगा, टीका लगवा दीजिएगा। आप जो पैर के बारे में आपने जो अभी बात किया कि आपके हैं जो जानवर हैं तो पाँव में उनके गुखरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सा जो कीचड़ में यहाँ वहाँ चलते हैं और बीच में कहीं पत्थर या कहीं कांच वाला उससे लग जाता है उसके कारण होता है इसे। भाई ये बीमारी कोई जो है बरसात में होने वाली नहीं होती है ये, तो उनके जब चोट लगता है उससे कारण होता है, जब मतलब वो किसी ऐसे खुरदुरी जगह पर चलेंगे तब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे बीमारी कोई नहीं है ये। हाँ, खुरहा चपका की शिकायत होती है लेकिन इस महीने में खुरहा चपका की शिकायत नहीं होती, वो सामान्यतः सितंबर के बाद होती है जब थोड़ा सा पानी कम हो जान होने लगता तब होती है। और दूसरी बात यह है कि इसका जिससे मान लीजिए कि खुर में घाव हो गया है तो उसके लिए जो है ना तो उस घाव की साफ सफाई करके और उसमें एंटीबायोटिक मलहम आता है वो मलहम लगाएं, और आप नहीं जा सकते हैं दवाई दुकान ले जा सकते हैं तो घर में सबके हल्दी होती है, हल्दी को पीस के बढ़िया उसमें जहाँ भुरक के पट्टी बांध दे, तीन चार दिन में घाव धीरे धीरे भरने लगता है। तो ये लोकल है, उससे यदि डॉक्टर पास में हो तो उनसे सलाह करके और पट्टी वट्टी बनवा लें उसमें और इंजेक्शन लगवाएं, जल्दी घास सूख जाता है उसमें।
0: अच्छा
2: जी।
0: हाँ योगेश जांगड़े जी
2: जी।

0: हाँ समझ में आ गया अपन, है ना भाई?
1: हाँ हाँ हाँ
0: ठीक है, उपचार करिए अपन, फोन करे हा एक बार अपन ला, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
2: बिरगाना शक्ति बारा ले श्याम शंकर मिस्त्री।
0: अच्छा श्याम शंकर मिस्त्री जी, आप मन के हमारे फोन इन कार्यक्रम में स्वागत हवे। ये तो बता हा का समस्या है?
2: मवेशी मन मा ये बरसात में सर का कथे मांगू भैया, रोग बीमारी रगत है, देखकर उपचार दवाई सब बताते डॉक्टर सर, अपना नमस्कार।

0: मांगू भैया, रोग बीमारी रगत थे तेकर उपचार दवाई सब बताते डॉक्टर साहब। अपना नमस्कार पहुँचे।
1: हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार।
0: हाँ वो कहा है ना, वो लार आते पतला दस्त देते।
1: हाँ तो ये लार बह रहा है, यदि घर घर की गले से आवाज आती है तब तो गलघोंटू हो सकता है, नहीं तो गलघोंटू नहीं है, कुछ चीज ऐसा वो खा लिया है जिससे लार उसके बहता है। तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा फिटकरी ले करके उसके जीभ में रगड़ दीजिए तो वो लार बहना उसको धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जो पतला दस्त की बात कर रहे हैं, तो बरसात में हरा चारा खाने के बाद थोड़ा सा पशु जो है ना वो दस्त करने ही लगते हैं। और ज्यादा ही पतला कर रहा हो तो सल्फा डिमिडीन की गोली आती है, सल्फा गोली आती है उसको दो गोली बड़े जानवर को सुबह, दो गोली शाम, तीन दिन तक दीजिए उसको। और एक पाउडर आता है निवलान आता है, डायरोक आता है, कई प्रकार के पाउडर आते हैं बाजार में डायरिया रोकने के लिए, तो उसको ले लीजिए। और 50 ग्राम सुबह है 50 ग्राम शाम को गुड़ में लड्डू बना कर दीजिए, उससे जो है डायरिया होगा वो कम खत्म हो जाएगा। आपके शक्ति बारा के पास में तो बेलगाना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाकर के वहां से दवाई आप प्राप्त कर सकते हैं।
2: श्याम शंकर मिस्त्री जी, समझ गए है ना अपन?
0: जी जी जी।
2: हाँ भाई ठीक है, तो ये उपचार ला कर ले हो, है ना? अपन फोन करे हा एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद आपला। गलघोंटू बीमारी के जो लक्षण है का है तेला बताओ।
1: तो उसको सबसे पहले यदि टीकाकरण नहीं होता, जैसे पहला पानी गिरता है ना, और ये पशु यहाँ वहाँ चरने फिर जाते हैं, तो चूंकि उस समय नमी ज्यादा रहती है और गर्मी भी रहती है, तो इन ये जो इसके बैक्टीरिया होते हैं ये फ्लेरअप हो जाते हैं उसके नाक उसमें नासछिद्रे आगे, और वहीं से ये इनकी बढ़ोतरी होती है। और जब इन्फेक्शन हो जाता है, इसे फेफड़े में ये इन्फेक्शन होता है, तो ये सांस लेने में दिक्कत होती है, तो घर घर की आवाज आती है। और दूसरा जो है ना, इनका बुखार जो है ना 105 डिग्री तक हो जाता है।
2: अच्छा।
1: मुंह जो है ना से सूजन, लार उसमें जीभ में सूजन आती है। हाँ। तो उससे लार बहता है।
2: हाँ।
1: और जो है ना गले में सूजन होती है, इसी में दबाव के कारण जो है ना वो जो सांस लेते हैं तब घर घर की आवाज आती है।
2: अच्छा।
1: तो ये इसके मतलब चार पांच लक्षण मुख्य होते हैं।
2: हाँ।
1: और यदि वैक्सीनेशन करा लिया जाए उसको, जैसे जून में वैक्सीनेशन या बरसात के पहले वैक्सीनेशन करा जाए, वर्षा हो गई पहले उसी समय वैक्सीनेशन करा दें तो फिर ये बीमारी नहीं होती है। तो इससे बचाव को सबसे उत्तम उपाय यही है कि हमारे किसान भाई जो है ना जब भी समय पूर्व वर्षा के पूर्व ही दे उसका अपना टीकाकरण करवा लेते हैं अपने पशुओं को, तो ये बीमारी होती नहीं। और खास करके मगु भैया मैं आपको एक बात बताऊं, ये बीमारी जो है ना जो अच्छे पोट जानवर होते हैं, गाय बैल भैंसा, उन्हीं को होती है, जो मतलब ये तगड़े होते हैं उन्हीं को होती है, जो छोटे मतलब मरियल होते हैं उनको नहीं होती है बीमारी।
2: ये तो लक्षण बता दिया, अगर कम ये लक्षण दिखत है मान लेवा, टीका नहीं लगवा तो बचाया जा सकता,
1: उसको बचाया जा सकता है, तुरंत एकदम से इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो उसमें क्या करना है कि जिस तुरंत डॉक्टर को बुला करके उसका उपचार करना चाहिए।
2: अच्छा, अच्छा।
1: तो इसके लिए जो है ना तो उसमें जो है ना तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लगाते हैं, उसे नस में एंटीबायोटिक दी जाती है, सल्फा डिमिडीन के इंजेक्शन जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का है उसको देते हैं, और अभी और उच्च क्लास की दवाई आ गई हैं उनको देते हैं, और जो सूजन कम करने की दवाई देते हैं, बुखार कम करने की दवाई देते हैं, नालजेसिक देते हैं, दर्द कम की दवाई देते हैं।
2: अच्छा।
1: ये लगातार मतलब 3-4 जब देते हैं तब वो जाकर कंट्रोल होता है।
2: बढ़िया, मतलब
1: बचाया जा सकता है इनिशियल स्टेज में, हो जाए तुरंत तब बचा सकता है, यदि लेट कर दिया 2 दिन हो गया तो फिर बचाना बड़ा मुश्किल।
2: अच्छा, मतलब पशु ले बचाए जा सकते हैं ये अगर उपचार तुरंत कर दिया जाए तो, है ना?
1: बिल्कुल बचा जा
2: जी, जी। एक टंगिया घला आप बता रहा नाव है ना भाई, तो ये कर लक्षण ला बता देता पशुपालक मला आसानी से जमा।
1: एक टंगिया जो बीमारी होती है मगु भैया, ये जो 2 साल तक के बच्चिया बछबा होते हैं, पड़िया पड़बा अच्छे थोड़ा पोट होते हैं उनको होती है।
2: अच्छा।
1: और इनके पुट्ठा में और आगे के पांव के ऊपर जो मांसल जमीन होती है उसमें सूजन आती है, उसको आप दबाएं।
2: अच्छा।
1: तो चर्र चर्र चर्र की आवाज आती है क्योंकि उसके अंदर गैस भरी रहती है, और उसके उसमें इसका भी बुखार जो है ना 102, 103, 104, 105 तक पहुंच जाता है, और यदि उपचार न किया गया तो ये इसमें बचाना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे पशुओं में मृत्यु ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका उपचार अच्छा उपचार के लिए यह है कि इसका जहां सूजन हो
2: अच्छा।
1: तहां उसको लंबाई में नहीं आड़ा काट करके उसको दबा दबा करके जितना फ्लूड उसके अंदर गैस उसको निकाल देना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट के 1% सोल्यूशन से उसको साफ करना चाहिए, और पेनिसिलिन का इस इंजेक्शन डबल डोज में इसमें लगाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो पेनिसिलिन से जो है ना तो ये कंट्रोल होता है, तो इसको जो किसान भाई है किसी के बछवा को हो जाता है तो उसको जो है ना तो वो लगवा सकते हैं, उससे जो है ना बहुत जल्दी आराम होता है।
2: नजदीकी जो
1: नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहां पर जाकर उसको बुला के जाना जरूरी होता है,
2: संपर्क करना बहुत जरूरी है भाई। अपन मन से कुछ कर नहीं सकते,
1: अपने मन से कुछ नहीं कह सकते
2: है ना भाई। तो ये बीमारी गला उपचार है कहे जाए,
1: उपचार
2: आसानी से बचाया जा सकता है जानवर ला, है ना भाई?
1: आजकल का मगु भैया जो टीका आया है उसमें गलघोंटू और एक टंगिया दोनों का मिक्स टीका है।

0: होता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो एक ही बार लगाने से दोनों को दो बार टीका लगाना नहीं पड़ता है, और दूसरा एक ही बार में लगाने दोनों बीमारी की बचत हो जाती है।
1: तो बढ़िया है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा, ये शासन जो है हमारे, ये बहुत अच्छा इसमें किया है इसमें, तो इसके इसके टीकाकरण के हमारे ख्याल से अब समय जो है खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इसको जून महीने से प्रारंभ कर दिए हैं।
1: ये तो आप बताया एक टंगिया बीमारी रोग के लक्षण और उपचार कहे जाए, कोनो फोन आते चाले थन। हेलो,
2: राम राम महंगू भाई।
1: राम राम, राम राम, कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
2: मैं भाठा पारा जतरेंगिल बोलत रहे महंगू भैया, हीरू राम साहू।
1: हीरू राम साहू जी, आप मन के हमारे फोनिंग कार्यक्रम स्वागत हवे, तो बताओ ना का समस्या है?
2: अरे दू चार ठाम से पशु भैया बरसात में का बीमारी से बचा रहना चाहिए, ऐसे थोड़ा जाएंगे लेने लेने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार साहू जी। मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो दो तीन बीमारियां होती हैं, गलघोंटू जिसे बघर्रा कहते हैं, दूसरा एक डंगिया होती है, जो छोटे छोटे जो 2 साल तक के बछिया बछुआ होते हैं उनके पाँव में सूजन आती है पुट्ठा में, तो उसको बचाव करने के लिए तरीका यही है कि जैसे टीम हमारी आती है या कि आप नज़दीक अस्पताल के पास रहते हैं तो स्वयं अप्रोच करके भी आप हमारे यहाँ के डॉक्टर साहबान को या उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको बुला करके और टीका पहले लगवा लीजिए। टीका यदि आप लगवा लेंगे तो ये दोनों बीमारी हो ही नहीं सकती हैं। तो सबसे उत्तम तरीका यही है बचाव का कि पहले टीका लगवा लें, उसके बाद बीमारी नहीं होती है, और टीका यदि लग गया है तो 100% सिक्योरिटी रहती है, कोई बीमारी नहीं होती है।
2: बंद है।
0: हाँ,
2: दो दूध गोरस निकलता है भैया, काका जमने जमने बच्चे पीला।
0: हाँ, तो हेटी बंद है तो उसमें दूध भरा है क्या?
2: हाँ, दो ढेर से निकलता है।
0: नहीं, नहीं,
2: बंद है।
0: नहीं, जो बंद है उसमें से दूध भरा हुआ है क्या उसमें, कि दूध नहीं भरा है घेटी में?
2: अब देखा तो है डॉक्टर साहब।
0: हाँ, उसको आप देखिए, उसको दूध यदि दूध भरा है और उसका छेद नहीं है तो डॉक्टर साहब जो नजदीक भाटापारा में होंगे उनसे आप बोल करके और छेद बनवा देंगे तो बन जाएगा, और यदि उसमें दूध नहीं भरा घेटी में, बीच में मुसली टाइप की है, गांठ है, तो फिर वो नहीं बनेगा, वो परमानेंट नुकसानदायक है फिर वो।
2: अच्छा।
0: हाँ,
1: फोन करे है एक बार आप मल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
3: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
1: राम राम, राम राम।
3: मैं नवागढ़ कटही जिला में तरल है, नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: नारायण नारायण नारायण, प्रकट हो गया ना। चलो भैया।
3: हाँ भैया, बढ़िया है, बिल्कुल रटा था। हाँ भैया,
1: तो मजा है कि कुछ सजा है, का है समस्या का है
3: भैया? का मजा का सजा जी, देखने रोज रोज के पानी गिरे धान पान सर गए।
1: एक तो नहीं गिरा थे तो चिल्लावत
3: नहीं बनाते,
1: नहीं गिरा थे तो चिल्लात रहा, अपने मन तो बमियात रहा, नहीं गिरा थे नहीं गिरा थे।
3: हाँ, का करवेगा,
1: सबे में शिकायत कैसे बनी बतावा।
3: हाँ जी,
1: नहीं गिरा थे तो नहीं गिरा थे कि था, गिरा थे तो गिरा थे कि था, कैसे करी बेचारा। एदार की समस्या बतावा, वो का समस्या है, विषय में आ जाए।
3: हाँ भैया, हाँ हाँ, डॉक्टर भैया राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम।
3: अब देख ना भैया, यदि भले झड़ी पानी करे हवा है तो जानवर मन ला को दिन ढीलना घलो मुश्किल हो जाते। हाँ भैया, तो जैसे भैया हम देखते हमारे पशुधन में ये पागुर भांजना अमोतिम पानी ऐसे बोलते है मन है, तो ये काबर मन के एक आदत टाइप के जानवर मन के काबर होते, और जैसे अचानक वो बंद हो गए, पागुर भांजना बंद हो गए या मोतिन पानी देना बंद हो गए, तो एकर का लक्षण होते भैया? एकर से कुछ जानवर मन ला बीमारी वगैरह हो जाते का? यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगा हूँ भैया आपसे। हाँ,
0: वर्मा जी, ये ऐसा है कि जब पशु स्वस्थ रहता है ना तो जब वो चारा खाता है, खा के अपने पेट में पहले जमा कर लेता है, इसके बाद जब आराम से बैठता है तो उसको बाहर करके फिर जुगाली करता है, उसको चारा को महीन चून करके फिर निकलता है, तब वो चारा पचता है, तो वो जुगाली करते हैं, मतलब स्वस्थ पशु रहता है तो वो जुगाली करता है सुंदर प्रेम से, और उसका जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मल टेम्परेचर 101 से 102 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो मोती पानी उसका आराम से दिखता है। यदि उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो मोती पानी फिर दिखना बंद हो जाता है, तो एक इंडिकेशन है कि इसको बीमारी है, कोई नहीं बुखार है कुछ है, इसको मोती पानी नहीं है, तो किसान जो है ना ऑटोमेटिक अपने डॉक्टर से संपर्क करके इलाज कराते हैं। और जब बुखार है या कि कोई पेट में दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो खाना नहीं खाएगा, पागुर नहीं करेगा वो। ये एक सूचना है किसान को, कि पशुपालक को, कि जो पशु है वो बीमार है और उसको जो है ना आप डॉक्टर को दिखाओ, उसको उचित इलाज कराओ।
1: बढ़िया, देखा बढ़िया लक्षण आप मन पूछे, बहुत अच्छा सवाल रही आप मन के, पशु मन में खास करके मोती रहना चाहिए और पागुर भांजे तो यह स्वस्थ पशु की निशानी कहे जाए, तो बढ़िया आप मन के बड़ा अच्छा प्रश्न रही सब, ये बात है सच में लागू होते, पशु अगर स्वस्थ है तो है ना, तो और कुछ समस्या हुई तो बतावा।
3: जैसे उलहर के बोलथन, कहीं कहीं सूजन हो जाते, जैसे गलकनी के सूजन हो जाते, कभी

0: में सूजन हो जाते तो ओला हमन बोलथन अपन भाषण ओलहर गे गा हमर
1: बरसात में होते चे हा
0: हाँ हाँ भैया तो ओ का होते और फिर इलाज हमन कैसन करी
1: कमजोर पशु कह जाए
2: यदि पशु के गले गले में सूजन है और घर घर की आवाज नहीं आ रही है, उसका जो तापमान है वो सामान्य है, सूजन हो गई इसका मतलब कि उसके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चाहे वो लीवर फ्लू का जो पशु है तालाब के किनारे चरता है और उसके निश्चित रूप से उसके लीवर में लीवर फ्लू की बीमारी है तो उसको डिवर्मिंग करते हैं, उससे लीवर फ्लू मर जाते हैं और वो धीरे धीरे जो सूजन होती है वो खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ में उसकी पतली लेटिन भी होती है उसको, तो ये दो चीज देखने लायक है। यदि सूजन पशु के गले में है और उसका तापमान 103 से 104 के बीच है और वो लार भी बह रहा है और घर घर की आवाज आ रही है, तो अब आप मान के चलिए कि उसको बखर्रा हुआ है और उसको गलघोंटू का इलाज आपको तत्काल कराना है, उसमें अपने गांव की वैद्य करने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर को बुला करके उससे इलाज कराना है।
1: नारायण भैया, समस्या के निदान तो हो गए भैया, आप मन के दोनों समझ गए ना, बढ़िया,
0: बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर भैया, डॉक्टर भैया बहुत बहुत बधाई भैया,
1: आप बोला बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मन फोन करता हूँ मल्ला ऐसा ने फोन करत रहिया है ना भाई,
0: आओ भैया
1: आज जो फोन करे एक बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भैया,
0: धन्यवाद भैया, जय जोहार राम राम।
1: हेलो कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
3: मैं भगत राम पटेल बोला था भैया, सिंगारवाड़ी गुटकुले।
1: भगत राम जी, राम राम राम राम,
3: आप ले भी राम राम और डॉक्टर साहब जी मल राम राम, राम सुंदर सुंदर राम, अच्छा वर्षा कराए बर भी आप मन का सबका हार्दिक बधाई।
1: ये दे बढ़िया, ऐसा आदमी चाहिए जी, एकदम खुश हो गया आप मना ना भाई, नहीं गिरा थे तो नहीं गिरा थे, नहीं गिरा थे कहते रहे, गिरा थे तो गिरा थे।
3: हाँ मैं कहते रहे मंगू भैया, खेती किसानी के दिन हर आगे धान लगाए जाबो, हल चलाबो, मेहनत करबो, सुख के फल पाबो, हरियर हरियर रुख राई ला बरसात में सब झन लगाबो, तभे आप हवा और बरसा ला बलाबो।
1: बढ़िया भैया, अब गरुआ ला का करिया?
3: अब गरुआ ला तो भैया हरियर हरियर जब चारा का उपजाबो तभे हम गरुआ का पाल सकबो और बांध के रख सकबो।
1: बढ़िया, का समस्या तेल बताओ ना।
3: अब हम समस्या यही है, हमारे मलंग आ सका था कि दिन बरसात के दिन है तो ऐसे होते कि हम समय समय में पशु मन की देखभाल करी, लेकिन अगर कोई कारणवश हम उनका टीका नहीं लगा सकें या देख रेख नहीं कर सकें तो ऐसा अवस्था में और का बीमारी परेशान कर सके का कर सकते हैं, एक बारे में जानना चाहते रहे। हाँ तो हम ये जानना चाहते रहे कि अभी बरसात के समय में छोटे मोटे रोग तो होते रहते पशु मन ला, लेकिन ये छह रोग का होते अब पशु मन बर एक घातक है और कौन कौन अवस्था में पशु मन ज्यादा परेशानी हो सकते है एक बारे में हम अच्छा से बतावा।
2: ये भगत भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसके बारे में चर्चा कर ही रहा था। छह रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और एक बार पशु को हो गई तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, छह घंटे से लेकर के 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा लाट साफ हो जाता है। इसमें इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि इसके जितने जुड़ल आरिफिस है यानी मुंह से, नाक से, कान से, आंख से, मल द्वार से, पेशाब के द्वार से, सब जगह से इसके खून करता है जब भी बीमारी होती है और बुखार 105 दिन की तक रहता है। वो खून जो होता है वो जो डामर होती है उसके रंग का होता है और जहां जहां पड़ा रहता है वहां वो जमता नहीं है खून, सामान्य तक जिससे खून बाहर निकलता है तो जम जाता है, ये खून जमता नहीं है। और इसमें से जो एंथ्रेक्स के कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जब वो वातावरण के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर एक खोल बन जाती है और वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो बिल्कुल बन जाती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हवा के माध्यम से, तो ये दूसरे पशुओं को जाके संक्रमित करता है। दूसरा इसका स्पोर जो है ना, ये जो आदमी के उसमें सांस नली में चला गया तो आदमी को भी नुकसान करता है, उसको मार देता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स की होती है और ये ईश्वर की कृपा कहिए कि हमारे यहाँ भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कहीं भी ये बीमारी नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि ये हमारे विभाग ने इतना मेहनत करके इसमें लगातार इसका टीकाकरण करवाया है कि अभी कहीं भी नहीं है, और यदि इक्का दुक्का कहीं हो जाती तो उसको तत्काल एकदम से टीकाकरण करके। हाँ और इसको जो है ना, तो यदि किसी पशु में हो गया लक्षण जिससे हो गया हो तो मरेगा ही, लेकिन जो साथ में हुआ, साथ में पशु रहता है उसका उपचार करना जरूरी रहता है। इसमें उसका उपचार करते हैं इसको, जो सुबह शाम दो बार जो नॉर्मल डोज होता है उससे दोगुना डोज जो है ना सुबह शाम पेनिसिलिन के देकर के इसको ठीक करते हैं, और इसके बाद जो स्वस्थ पशु रहते हैं उनको टीका लगाते हैं तत्काल, और उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में जितने पशु होते हैं सबको टीका लगाया जाता है, ताकि मतलब कोई भी पशु जो है ना जिससे रोग से संक्रमित ना हो, हाँ प्रभावित ना हो, और दूसरा इसके रोग से मनुष्य प्रभावित ना हो, क्योंकि मनुष्य में फैलती बीमारी है फिर, तो ये बहुत

0: खतरनाक बहुत ही मतलब बीमारी होती है जो मतलब पशुओं से मनुष्य में भी फैल जाती है। ये इसलिए जो है ना इस पर बहुत विशेष ध्यान दे करके और इसके रोकथाम और टीकाकरण का कार्य शासन करती है, हम लोग करते हैं इसको।
1: भगत राम जी, ऐसे लगा थे कहूँ
2: हाँ
1: आप
2: भैया,
1: सुने रहे हो या वो कर रहे हो तो घबरा के आप पूछे, ऐसे लगा थे एकदम आप मन फोन कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय रही सवाई, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भगत राम पटेल जी। आखिर में हम लंपी स्किन डिसीज करके बीमारी के बारे में थोड़ा बता दे,
0: ये जो है ना
1: मच्छर
0: बीमारी
1: मच्छर
0: मच्छरों से या मक्खी जो होती है उनके काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, और इसमें से डोंटा डोंटा जिसे बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी में, तो पशु के पूरे शरीर में हो जाते हैं एकदम से, और पशु खाना पीना बंद कर देता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और इसके बाद पशुओं की मृत्यु हो जाती है कमजोर होने के कारण। इसकी भी जो टीकाकरण है तो साल भर में एक बार जो है टीकाकरण इसका करा देते हैं ताकि वो दोबारा उसको बीमारी ना हो। तो
1: अच्छा,
0: ये अभी जो है ना तो 4-5 साल से ज्यादा प्रभाव डाल रही है।
1: हाँ
0: तो किसान भाई यदि अपने पशु को, बीमार पशु को अलग करके रखें और जो
1: हाँ
0: स्वस्थ पशु अलग करें, तो उन्हीं के दूसरे पशुओं को नहीं होगी,
1: हाँ
0: और नहीं तो एक दूसरे पशु से दूसरे पशु में हो जाती है, दूसरे से तीसरे में होती है, फिर चरने गए बर्दी में तो फिर पूरे बर्दी को जाती है। इस प्रकार पूरा का पूरा गाँव का जो पशुधन है वो इसमें संक्रमित होता है।
1: अच्छा
0: तो इसको जो है ना तो बचाव करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, और लगातार 4-5 लगाने से फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है।
1: बहुत अच्छा विषय रही सवाई आप के, वर्षा ऋतु में पशु मन में होवैया बीमारी और ओकर बचाव के उपाय, ये बड़ा अच्छा विषय रही सवाई। हमारे संगवारी मन के, पशुपालक मन के फोन आई जेकर समाधान करे है, अब हमारे स्टूडियो में आया एक बार डॉक्टर RM त्रिपाठी जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मगो भैया।
1: आज के रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दे सौरभ केसरवानी जी मन, इस दुविधा महंगू भैया के राम राम जय जोहार।
3: संगवारी हो, अभी हम सुनें फोन इन कार्यक्रम जिकर विषय से वर्षा ऋतु में पशु मन में होने वाला बीमारी और ये बीमारी मन ले बचाव के उपाय, और ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ रहने डॉक्टर RM त्रिपाठी, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली, और ये कार्यक्रम के संचालन करें हमारे महंगो भैया हर। तो संगवारी हो, ये तो हो गए फोन इन कार्यक्रम, अब आवाज सुनत है संदेशाला।
4: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
5: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें, और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहा है?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं।

0: और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: संगवारी हो, अब हम बात करबो आज के मौसम के बारे में। तो आज के अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड और आज के न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हफ्ता तक बादल छाए रही ऐसे संभावना हवा है और एक हफ्ता तक पानी घलो गिर सकत हवा एक पूरा संभावना हवा। संगवारी हो, कहूँ कहूँ बिजली की लौ की गरजे की संभावना हवा है, तो देखता के खेत खार में रहो, काबर कभी भी बिजली के लौ गरज के गाज गिरी की संभावना रहती है। संगवारी हो, कृषि परामर्श की बात करबो तो अभी के समय में जिन हमारे किसान भाई मन लईहरा धान की बुआई करे हुआ हो, ओ मन हर अपन खेत के पानी ला खाली कर देवा ताकि धान के जो फसल हवा जराई आए हो ही ओमन नुकसान झन हो। जिन संगवारी मन पौघा धान बोए हो और जेकर धान की लंबाई हर एक बित्ता हो गई है, तो मन जरूरत के हिसाब से पानी ला भर के रखो। संगवारी हो, बरसात के समय में अपन पशुधन घरों के ऊपर चेत कराओ, बरसात में हमर पशु मन खुला में झन रहे, छाँव में रहे, ओकर छाँव पर जो भी व्यवस्था बनाया हुआ वोला दुरुस्त कर लेवाओ। संगवारी हो, अभी के समय में रुख राई लगाए के बढ़िया समय हवा है, तो बगीचा लगाए वाला जो आप तैयारी करत हुआ तो बगीचा के लगावाओ। कोई प्रकार के अमराइल बनाए के तैयारी हुई तो संगवारी हो आमा घलव के फसल ला इस समय में लगा सकत हो। और संगवारी हो, आज के मंडी के भाव हमल नहीं मिल पाइच, तो एक संगे संग आज के कार्यक्रम में विदा ही बिरा हुआ थे। तो अपन भाई राम सनील देव विदा, राम राम, जय जोहार। और आज के किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 8 बजने को है। संसद समीक्षा अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर 1 सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई

फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल

नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और सुनील चिपड़े की।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और सुनील का नमस्कार।
0: सुनील, बरसात की झड़ी जारी है और आप भी आधा रेनकोट पहनकर अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हरियाली की चुनर जैसी प्रकृति में आ रही है उससे मन तो बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। और बहुत सारी आशंकाएं थी इस बार जलवायु को लेकर, पर्यावरण को लेकर, बारिश को लेकर, लेकिन राहत की बात यह है कि बिलासपुर संभाग में और आसपास जो बारिश हो रही है उससे ऐसा लगता है कि इस बार शायद हमारे किसानों को पानी की कमी ना हो। लेकिन फिर भी जैसी आशंकाएं हैं उसके चलते हम यही संदेश देना चाहेंगे, अभी भी जहां बारिश गिर रही है, जब गिर रही है, उसका संग्रह कर लिया जाए, क्योंकि धान की फसल के लिए अभी भी 2 महीने का समय आपको और चाहिए कि जब पानी खूब हो। तो ये कोशिश हमारी बनी रहे, ढलान वाली जगहों पर यदि इस पानी को बचा लिया जाए तो इसका उपयोग आने वाले महीनों में भी किया जा सकेगा। तो चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हर बार ऐसी कुछ बात से ही शुरुआत हो जाती है। और एक और बात जो आज जैसे हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं।
1: जी हाँ।
0: तो वाकई में रेडियो का ये सफर

0: 90 साल का सफर तो हमने मना लिया, लेकिन स्वतंत्रता के कितने ही पहले रेडियो तरंगों की शुरुआत हुई थी। और जो भी रहा हो शासन में, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हो चाहे कोई भी रहो, इस आविष्कार से उन्होंने इनकार नहीं किया और पूरे देश को इसकी सौगात मिली। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम उस दिन को भी याद करते हैं जो स्वतंत्रता से बहुत साल पहले का था।
1: जी, हमारी जो तरंगे हैं वो कितनी जादुई है ना।
0: सच,
1: स्टूडियो में बैठा उद्घोषक प्रस्तोता मुस्कुराता भी है तो मुस्कुराहट सुनाई देती है, ये अपने आप में कितना मैजिकल है।
0: बिल्कुल, और इससे भी मैजिकल इन तरंगों की पहुंच है जो किसी जहाज में समुद्र के बीच में वीराने में फंसे नाविक को भी सिग्नल दे पाती है, बाढ़ के दौरान दे पाती है, ऐसे किसी द्वीप में फंसे इंसान को जहां और कुछ नहीं पहुंचता ये रेडियो तरंगे पहुंच जाती है।
1: बिल्कुल, पहले मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं था तो लोग तो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, वो जो आवाजों का रिश्ता है वो अभी तक कायम है।
0: और मुझे नहीं लगता ये रिश्ता कभी भी कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इतना कुछ हो गया, लेकिन आज भी हमारे श्रोताओं की जो बॉन्डिंग है, जो बंधन है, जो प्यार है हमारे साथ, वो उतना ही लाइवली है, उतना ही जिंदा दिल तौर पर जिंदा है।
1: ये मिठास का रिश्ता है।
0: सच। तो चलो इसी मिठास के साथ पत्रों की शुरुआत करते हैं।
1: ये पत्र है चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह और उनके साथियों का। उन्होंने लिखा है कि तीजन बाई जी के निधन के दिन एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो हमें बहुत ज्ञानवर्धक लगा और उनके बारे में जानने का बड़ा मौका हमें लगा। दूसरा एक और ईमेल इनका है, उसमें ये कह रहे हैं कि सुप्रिया भारतीयन जी द्वारा एक मुलाकात के कार्यक्रम में गणमान्य लोगों और अधिकारियों की भेंटवार्ता आप सुनवाते हैं जो बहुत रोचक होती है, ज्ञानवर्धक होती है। और लिखा है कि किसकी तारीफ करें और किसकी ना करें, बहुत ये पेशो-पेश वाला मामला है, इसलिए आकाशवाणी का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी को बधाई लिख रहे हैं। ये
0: क्या बात है, वाकई सुनील, हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता जो पूरे मनोयोग से तल्लीनता से हर दिन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, वाकई में तारीफ के काबिल है। और हमारे श्रोता ये निश्चित नहीं कर पाते कि किसकी तारीफ करें किसकी नहीं करें, लेकिन आप कार्यक्रम सुनते हैं, सभी की तारीफ करते हैं और पत्र भेजते हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अगले कुछ पत्र मैं लेती हूँ, ये हमारे पास आए हैं हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, किरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा माखीजा कुटुम्ब। बहुत सारी बातें इन्होंने भी लिख भेजी हैं। 17 तारीख को रात को रजनीगंधा कार्यक्रम महावीर बरगाह ने प्रस्तुत किया, बरसात के संदर्भ में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बड़े अच्छे गीत सुनाए, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि 19 तारीख को सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम को इन्होंने सुना और बाढ़ के समय स्वास्थ्यगत जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके संदर्भ में बड़े विस्तार से डॉक्टर देवेंद्र सिंह से जो बातचीत थी वो इनको काफी अच्छी लगी, जानकारी परख लगी, इसके लिए हमें बधाई दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि रजनीगंधा कार्यक्रम 22 जुलाई का सुना, बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन का सुबह का हेलो आपकी पसंद सुनील चिपड़े जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, दार्शनिक स्थलों की बातें साझा हुई, गीत सुनाए गए, ये कार्यक्रम अच्छा लगा। मुकेश को याद करते हुए रजनीगंधा में अंशुल को बधाइयां दे रहे हैं और ये कार्यक्रम भी इनको बहुत अच्छा लगा। सभी कार्यक्रम ये बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़े विस्तार से हमें पत्र भेजते हैं सुनील, पत्र के लिए इनका हम धन्यवाद देते हैं।
1: अगले पत्र में ये बातचीत है कि ईमेल करे, गीत सुने, चिट्ठी मिली और युवा जगत ग्राम सभा कार्यक्रम इन्हें सर्वाधिक पसंद है, हमारा भरपूर मनोरंजन भी होता है और सीख व प्रेरणा मिलती है। ये लिख रहे हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू।
0: ईमेल करे, गीत सुने के 21 जुलाई के अंक को पसंद कर रहे हैं और अंशुल की तारीफ कर रहे हैं हमारे श्रोता लोरमी ग्राम चचड़ी से कमलकांत मनावी, प्रमिला नेहा और पुष्पराज मनावी।
1: करही भदर से ये ईमेल है पुरुषोत्तम निर्मलकर और शारदा निर्मलकर का। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी की प्रासंगिकता गरिमा आज भी बनी हुई है, कार्यक्रम के दौरान उद्घोषक उद्घोषिकाओं के प्रसारण यात्रा के अनुभव सुनना बहुत अच्छा लगता है और उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता किसी पारिवारिक बंधन से कम नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ऐसा साथी जो एकांत में भी अकेलापन महसूस न होने दे, उद्घोषक की आवाज श्रोताओं के मन में चित्र उकेरती है। और तारीफ लिखते हैं साथ में और कह रहे हैं कि 21 जुलाई को कार्यक्रम भुइया के बोली में जन संरक्षण पर आधारित कहानी कविता इनको सुनने को मिली, अच्छा लगा।
0: बहुत बढ़िया, और वाकई में ये जो रिश्ता है ये अनमोल है, बहुत आत्मीय है। और इस दौरान 90 साल का जो भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें हमने कई हमारे पूर्व प्रसारकों को भी शामिल किया था और उनके जीवन के अनुभव, उनकी यात्राएं सब श्रोताओं से जुड़ी हुई हैं, आपसे जुड़ी हैं। आपका हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो एक दूसरे के बिना तो अधूरा है, इसलिए जब भी बात होगी आप भी उसमें शामिल होंगे, जब हमारी बात होगी तो आप होंगे, जब आपकी बात होगी तो हम होंगे और होंगे ये रेडियो तरंगे। कुल मिलाकर कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं और पत्र के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। और अगला ये पत्र आया है हमारे पास नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, और इन्होंने 21

0: रिक की आज सुबह कार्यक्रम के लिए प्रियंका बालानी को धन्यवाद दिया है, बहुत ही रोचक जानकारी दी और सदाबहार नगमों में आनंद बख्शी के जन्मदिन पर बहुत ही सुंदर गीत सुनाए और कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद।
1: एक पत्र है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का। इन्होंने लिखा है कि 18 जुलाई को समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह इन्होंने सुना, साथ ही 20 जुलाई के कार्यक्रम भुइयां के बोली में डोरेलाल कैवर्त से कहानी और बासंती वर्मा जी से कविता इन्होंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। और 7:20 और 7 बजे के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के कार्यक्रम को ये पसंद करते हैं और पिछले कार्यक्रम में अंशुल गुलकरी ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, इसके लिए बधाई दे रहे हैं। और साथ ही में 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक बधाई हमें भेज रहे हैं।
0: बिल्कुल सुनील, और हम भी अपने श्रोताओं को आज के दिन की बधाइयां दे रहे हैं और पत्र के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। और ये जो अगला ईमेल है मेरे हाथ में, ये है मगरपारा बिलासपुर से रेणु शुक्ला, राजेश शुक्ला, वैभव, विनी मिश्रा का। 22 तारीख का हेलो आपकी पसंद बहुत सुंदर था, सुनील चिपड़े जी की जोरदार प्रस्तुति में इन्हें मजा आ गया। और साथ ही इन्होंने सेहत की बात डॉक्टर के साथ कार्यक्रम भी सुना, देवेंद्र सिंह जी द्वारा दी गई जानकारियां इन्हें बहुत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूर्ण लगी और इसके लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं। और हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम की तारीफ में लिखते हैं तो ये तो बिना का गीत माला से कम नहीं है। क्या बात है भाई, आज आपने रेडियो के सबसे पॉपुलर कार्यक्रम को याद किया और आकाशवाणी के कार्यक्रम को उससे जोड़ा। हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी तारीफ ऐसे ही बढ़े और ये उस स्तर तक पहुंचे जहां पर पूरी दुनिया उस कार्यक्रम को याद करती है।
1: बिल्कुल, अगला ईमेल है 20 जुलाई को प्रसारित छत्तीसगढ़ी गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत के लिए। इन्होंने लिखा है कि सुंदर बातचीत के साथ बेहतरीन गीत सुनवाए गए, प्रस्तुतकर्ता श्वेता पांडे को बधाई दे रहे हैं। ये हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या, कुमारी तानिया रजक।
0: और एक और कार्यक्रम की तारीफ भी ये लिखते हैं कि 23 तारीख का माटी के स्वर कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे श्रोताओं के पत्र शामिल हुए, अंतरा को भी बधाइयां। और आगे ये जो पत्र आया हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया है, बरेली कैंट चनेटी से आया है, लिखने वाले हैं विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। इन्होंने लिखा है कि तेज रफ्तार जिंदगी के इस दौर में रेडियो के कार्यक्रम बड़े ही सुकून भरे होते हैं और एक से बढ़कर एक हैं, बड़ी मेहनत के साथ तैयार होते हैं। और 16 जुलाई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, 17 तारीख का सदाबहार नगमे, 18 तारीख को रजनीगंधा जो राजेश खन्ना जी पर केंद्रित था, 20 तारीख का ईमेल करे गीत सुने और 22 तारीख का यादों के झरोके से कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। आपके इस खूबसूरत से पत्र के लिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद।
1: अगला पत्र है बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति का। ये लिखते हैं 16 जुलाई को प्रसारित बहुत ही लोकप्रिय साप्ताहिक समीक्षात्मक कार्यक्रम चिट्ठी मिली सुनने को मिला, हमेशा की तरह मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया गया, डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी और मुरारी ठाकरे जी को बधाई दे रहे हैं। साथ में 20 जुलाई को प्रसारित फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत इन्हें बहुत अच्छा लगा, श्वेता पांडे जी को बधाई दे रहे हैं। और 22 जुलाई को प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद इन्होंने पसंद किया है, निराले अंदाज में प्रस्तुत किया, सुनील चिपड़े ने बधाई दे रहे हैं। और अगली बात इन्होंने लिखी है 19 जुलाई को प्रसारित बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा सुनने को मिला, दिलकश अंदाज में प्रस्तुत किया कजरी दीदी ने, उन्हें बधाई दे रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, हम देते हैं अपने श्रोताओं को इस खूबसूरत अंदाज में पत्र लिखने के लिए। और चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर के माया प्रेम है, गांव गांव गली गली में बगर गई है। क्या बात है भाई। और आगे लिखा थे कि संगवारी मन के गुरतुर बोली अब्बड़ नीक लागते, अब्बड़ मीठ लागते और रोज आनी बानी के एक से बढ़कर एक सुंदर मनमोहक प्रस्तुति सुन के मन के चोला गदगद हो जाते और यही सुघर माया के बोली लांतस मसमा के। और कार्यक्रम 16 तारीख के चिट्ठी मिली कार्यक्रम रहीस जेमा परोसी सुंदर सुंदर मीठ मीठ बोली के बुलैया हमर दीदी मन मोला सुप्रिया दीदी और मोनाली दीदी। का बात है। और आगे लिखते हैं कि हमर संता सा धन्य हो गया और यही क्रम में तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम श्वेता नोनी के मद्रास कस मीठ मीठ बोली संग कार्यक्रम के आनंद है और बढ़ गए। और आगे लिखत है कि कजरी बहनी के अमृतमय बोली संग आप मन के गीत कार्यक्रम लसुनी और मन के चोला फिर हरी आगे। आगे लिखत है कि रविवार के संझौती बेरा मा हमन है खुशबू बहनी के और अंतरा बहनी के कार्यक्रम लसुनिन तो सप्ताह भर के कार्यक्रम के बड़े समीक्षा इमन लिख कर भेजे हैं। और आगे लिखत है कि हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम हमर मयारू भाई सुनील चिपड़े जी के शानदार बेहतरीन अंदाज मनमोहक आवाज ले सजे धजे आनी बानी के गोट संग सुंदर सुंदर गीत संगीत लसुन के मन हम मोहागे। भाई का बात है, कतका बढ़िया मीठ भाखा आप मन बोलत हो लिखत हो, यही तो छत्तीसगढ़ी भाखा के मिठास है। और सुघर ये प्रस्तुति बर आप मन धन्यवाद धन्यवाद देवत हो और अका बढ़िया पत्र पर हमन भी आप मनला धे रखन धन्यवाद देवत।

0: धन।
1: अगला ईमेल नैला बोरसरा जांजगीर से है। हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अंजुलता तिवारी, उमाबाई तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, अमन कुमार तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी का इन्होंने लिखा है कि ईमेल करें, गीत सुने आपकी पसंद, माटी के स्वर, खेती के बाद सभी में जानकारी अच्छी मिलती है, हेलो आपकी पसंद भी इन्हें अच्छा लगता।
0: क्या बात, पत्र के लिए धन्यवाद दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं सुनील। और ये पत्र हमारे पास आया है भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, चुवाराम सूरत बारेकर और नारायण यदु का। लिखते हैं कि 16 जुलाई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, सुप्रिया जी मोनाली जी को बधाई। 17 तारीख को महावीर बरगाह को बधाई दे रहे हैं, रजनीगंधा की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। 18 जुलाई को ऐश्वर्य जी की रजनीगंधा की प्रस्तुति राजेश खन्ना पर केंद्रित थी, अच्छी लगी। 19 तारीख को मदन जी ने रजनीगंधा नीरज पर केंद्रित करके बड़े खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया, बधाई। 20 जुलाई को अपेक्षा शर्मा ने आपकी पसंद की बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति दी। 20 तारीख को खुशबू जी ने रजनीगंधा गीता दत्त, राजेंद्र कुमार और नसीरुद्दीन शाह पर केंद्रित करके बड़े खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया। 21 तारीख का अंशुल गुलकरी द्वारा प्रस्तुत आनंद बख्शी पर केंद्रित कार्यक्रम रजनीगंधा भी अच्छा लगा। और 22 तारीख को मुकेश की जन्म जयंती पर केंद्रित रजनीगंधा दोनों ही कार्यक्रम के लिए अंशुल को बधाई दे रहे हैं। और 23 जुलाई आज सुबह भी इन्होंने कार्यक्रम सुन लिया है, अंतरा को बधाई दे रहे हैं, सदाबहार नगमे बहुत सुंदर थे, महमूद पर केंद्रित करके बड़ी ही शानदार प्रस्तुति देकर दिल खुश कर दिया। वाह, आपका दिल खुश हो गया, पत्र हम तक पहुंच गया। यही तो आज के जमाने का कमाल है कि आज ही सुना, आज ही पत्र भेजा और हमको मिल भी गया और चिट्ठी मिली में शामिल भी। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: अगला ईमेल है पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल का। इन्होंने लिखा है कि चिंतन कार्यक्रम जो कि 23 जुलाई को प्रसारित किया गया, छोटी छोटी बातें और जीवन में मिठास, इन्हें प्रेरणादायक लगा। साथ ही इन्होंने लिखा है कि आज सुबह कार्यक्रम में सामयिक चर्चाएं, मधुर गीतों का सुंदर समन्वय सुनने को मिला, ये अच्छा लगा। और 8:30 बजे प्रसारित माटी के स्वर कार्यक्रम में अंतरा चक्रवर्ती जी ने सहज, प्रभावशाली और मधुर प्रस्तुति दी, उसके लिए वे बधाई दे रहे हैं। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है जिन्हें ये पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, पत्र भेजते हैं, पत्र के लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है रसेड़ा से, लिखने वाले हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या और दिकेश कुमार साहू। ये लिखते हैं कि 23 जुलाई को रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था, इसके लिए हम आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। वाकई में आप सबको भी रेडियो प्रसारण दिवस की बधाइयां। और लिखते हैं कि इस संदर्भ में बहुत ही अच्छी जानकारी अंतरा जी ने आज के कार्यक्रम में दी। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम 19 तारीख का अच्छा लगा, मदन को बधाई दे रहे हैं। उसी दिन का ग्राम सभा और आप मन के गीत कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, कजरी दीदी को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। और 20 तारीख का ईमेल करें, रजनीगंधा कार्यक्रम राजेंद्र कुमार, नसीरुद्दीन शाह, गीता दत्त पर केंद्रित था, खुशबू को बधाइयां दे रहे हैं। 21 तारीख को भुइयां के बोली कार्यक्रम में इन्होंने सुना डोरेलाल कैवर्त जी की कहानी और बासंती जी से काव्य पाठ, इन्हें बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुति के लिए हमें धन्यवाद दे रहे हैं। और 21 तारीख और 22 का ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम नए पुराने गीतों का मिश्रण था, अंशुल को बधाई दे रहे हैं। और 23 तारीख को माटी का स्वर कार्यक्रम अच्छा लगा, अंतरा को भी बधाई दे रहे हैं। और आपको भी इतने प्यारे से पत्र के लिए ढेर सारा धन्यवाद।
1: अगला ईमेल है दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसवणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी का। ये लिख रहे हैं कि 22 जुलाई को प्रसारित युवा दिलों की धड़कन कार्यक्रम युवा जगत सुना, जिसमें महकती हुई और खनकती हुई आवाज के साथ महक ने प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत इन्होंने जो भी कैरियर गाइडलाइन और वानिकी के संदर्भ में बातें की, इन्हें अच्छी लगी और जानकारी परक लगी। और अंकिता पांडे जी द्वारा शुभम पाठक से ली गई बातचीत इन्हें उपयोगी लगी और सामायिक घटनाओं के साथ इन्हें यह कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। साथ ही लिखा है, रविवार को ग्राम सभा में आप मन के गीत, आपकी पसंद, गुरुवार के माटी के स्वर, आपकी पसंद, ईमेल करें, गीत सुने, सभी कार्यक्रम सराहनीय होते हैं।
0: तो ये हमें धन्यवाद दे रहे हैं और हम भी इस पत्र के लिए इनको धन्यवाद दे देते हैं। और सुनील, ये कार्यक्रम अब समाप्त करें, इससे पहले हम अपने श्रोताओं को अपना पता बता देते हैं।
1: तो हमारे ईमेल का पता है patra@gmail.com और पत्रों के लिए पता है चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, नूतन कॉलोनी, सरकंडा, पिन कोड है 495006।
0: तो अब आपके पत्रों का इंतजार रहेगा अगले हफ्ते। और चलते चलते इतना ही कहेंगे कि इस बारिश का आनंद लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ पेड़ लगाएं उनका भी ध्यान रखें और पानी को जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करें और हमारा रेडियो सुनते रहें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और सुनील का नमस्कार।

पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और सुनील चिपड़े की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती से राग भैरवी में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती से राग भैरवी में ठुमरी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 8:45 होने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: पर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक

0: अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
1: At the level of the Prime Minister,
2: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि

0: अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों

0: शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition's protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile,

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है छोटी बहन।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है लाखों में एक।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। आए हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: ये सोला साला तंदान है तेरे ख्याला चंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: रुपया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

भेज दया के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तुम्हारे पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता।

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

ஏன் விடுதுரா?

0: ஆஷா பத்கம்மா பத்கம்மா
1: எங்கண்ணா எங்கண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
1: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
1: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
4: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला या ताली नहीं रहा गाना गाना।
4: चल
3: देवी तुम बताना बताना।
2: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।

छिदे तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई।

0: एक पे कैसे रहती जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल ली गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देवबर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसे फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।

0: है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: ही साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवक के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर प्रसारण का बदलता क्षितिज विषय पर परिचर्चा का प्रसारण।

0: राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष लीजिए सुनिए विशेष वार्तालाप प्रसारण का बदलता क्षितिज। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के जी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल।
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों ने बहुत एक्साइट किया और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिनमें गति है, प्रगति है। दिस क्रिएटिविटी, दिस एक्साइटमेंट, दिस मूवमेंट एंड आज का फोकस भी इन द कॉन्वर्सेशन। वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें से बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है। सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर। शी इज द रिसिपिएंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स। अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा। डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं। डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी। With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business, that is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and also engages with actually designing the syllabus, which he's done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries.

0: He has served as the Vice Chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं, जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं तो अगर हम री इमेजिन कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं इंटर जेनरेशनल शिफ्ट जो इस री इमेजिनिंग में और रिक्रिएटिंग में आएगा वो किन एरियाज में आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि जब हम री इमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इसमें एक शब्द है री, हमें फिर से विचार करना है, फिर से इमेजिन करना है, तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे। यानी आप री इमेजिन कैसे करेंगे? आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा, उसके आधार पर आप री इमेजिन कर पाएंगे। तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे, तो हमने भाषा के स्तर पर हमने री इमेजिन करना शुरू किया। जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है, कि हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए। जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूं तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी, और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए, खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी, जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है। विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर, मैसेज और रिसीवर की बात करते थे, वहां पर डेनिस मैकवेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है, वो एक्टिव है। तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है। पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूँ। इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूँ। यानी आपकी एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं। पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं, तो मैं उनको इमेजिन करते हुए, उनका चित्र देखते हुए, हम चारों का मुझे पता है, शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी।
0: थैंक यू अंजुम। कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है, और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडियम होता है, केजी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस, दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इम्पैक्ट। यू हैव सीन ट्रांजिशन, टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन? हाउ डू यू सी दिस?
2: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द विसिसिट्यूड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेलीग्राम हैज वाउंड अप, landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues, the charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also, but when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population. Whether it is the agriculturist or the fisherman, it remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now, in this context, I'll come to your question.
0: Right.
2: And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the, I would say, the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where, because it has been said that a photograph can speak 1,000 times better than a word, so it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio-visual mediums, and the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said,

0: You can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video. And this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
1: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP and what would it be?
2: आकाशवाणी के 90 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। 8 जून को 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुंची है और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इंटरनेट उसी दौर में आता है और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है। उस दौर में हमारा बचपन रहा है जब हमारे यहाँ रेडियो आता था तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। हमने वो यात्रा भी देखी है जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं। और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है। विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो विजुअल हो सकता है। 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का, मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है। अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर, रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं। स्मृतियों से शुरू हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are, say, three new ideas that could actually reimagine broadcasting?
3: जो माध्यम जिसके लिए बना है वो अगर उसी में एक्सेल करे तो उसकी रीच, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी. इफ वी स्टार्ट गेटिंग विजुअल वी आर ओनली सेकंड बेस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दूरदर्शन, वी हैव सेवरल अदर प्राइवेट चैनल्स, वी ऑलरेडी आर सीइंग द प्रेशर ऑन प्राइवेट एफएम्स टू गो डिजिटल. आई डू द रेडियो फेस्टिवल, आई हैव डन 9 एडिशंस ऑलरेडी एंड व्हाट आई हैव सीन देयर एंड आई हैव टॉक्ड टू सम ऑफ द

0: हम डिफ्रेंसिएशन कैसे ला सकते हैं, क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
1: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, जाहिर सी बात है। विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया, साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे, तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया। साल 2007 में रिकी जार्विस बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे, किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं। बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया। कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी, कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है, यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही है मैं मानता हूँ। दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज़्यादा रहता है। आप अपने एल्गोरिदम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ पर क्वालिटी गिरती है, क्योंकि मुझे व्यूज़ की अब दरकार है, मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही आप व्यूज की तरफ जाएंगे आप क्वालिटी से गिर जाएंगे। आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया, हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है, यहां पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो।
0: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में? एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द क्वालिटी, डू वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर और डू वी टेल देम व्हाट यू शुड आस्क फॉर? एंड आई थिंक ये दुविधा रही है। केजी, कमिंग टू यू, टू थिंग्स, वन इज ऑफ कोर्स हाउ वी द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लाइक यू स्पोक अबाउट इन द फोर्स मल्टीप्लायर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट इन टर्म्स ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेज स्पेशली फॉर द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कि कंटेंट के गार्डरेल्स कुछ ज्यादा ही हैं। कभी कभी हम मानते हैं कि गार्डरेल्स हमें बढ़ने नहीं दे रही, हमें एक्सपैंड नहीं करने दे रही, हमारी विजन सीमित रख रही है, बट कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्डरेल्स मुझे आगे लेके जा रही है। तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलिवेंट रहें?
2: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देके बाहर निकलता हूँ और वो ब्रॉडकास्ट होता है, तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना। ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है। आई गो टू सेवरल प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज द वन प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टिल रिसीव फीडबैक एंड पीपल टेल मी दैट सर, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है और हमने चलते चलते सुना। तो ये रेडियो का चार्म है, रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूँ। दैट इज द चार्म ऑफ द रेडियो दैट स्टिल एंड्योर्स। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात कही, क्रेडिबिलिटी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जुड़ी है। ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यस, तो ऑल इंडिया रेडियो की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो इज सिनोनिमस विद ब्रॉडकास्टिंग। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट FM चैनल्स, बट रेडियो टुडे इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज द ऑल इंडिया रेडियो, द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड हाउ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बिकॉज हम सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम TRP के रेस में नहीं हैं, हमें जो है माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं रेडियो का बुलेटिन सुनता हूँ तो मुझे पता है कि आज देश में क्या हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है। आई गेट ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज, आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज। आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे। लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात, हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। मन की बात की स्वीकार्यता पर PhDs हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका हो रहा। एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्य

0: सहारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में, उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोज पॉइंट्स। अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात कही, मैं ये कहूं कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था, तो उसको तो रिटेन करना ही है, हमको इनोवेट करना है। उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा। बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। बिकॉज टेलीविजन चैनल्स का काम नहीं था वेबसाइट चलाना, क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट न्यूज क्यों चला रहे हैं? रील्स के फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं?
1: अखबार भी निकाल रहे हैं,
0: अखबार भी निकाल रहे हैं, क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है। दैट डज नॉट इन एनी वे डाइल्यूट योर कोर स्ट्रेंथ, और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है। एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, आई बिलीव दैट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड ऑल दैट, इस देश के कलाओं को संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूं, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूं, उनका रिकॉग्निशन है। आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है, इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट जर्नलिज्म। सॉरी टू से, नन ऑफ द प्राइवेट चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ओनली प्रसार भारती इज टॉकिंग अबाउट, एंड कम्युनिटी रेडियोस ऑफ कोर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट।
2: उमेश, आई थिंक सोशल इंटरेस्ट हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, कमर्शियल इंटरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, इवन सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ चैनल, अ लॉट डिपेंड्स ऑन क्या वो सस्टेनेबल है। तो ये कॉमर्स, सोशल, एंटरटेनमेंट, इसको बैलेंस करना फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही हो, बीजी बर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है। जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए, उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा। और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही, वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं, चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो। क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली, तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम ताल कर रहा है, और तकनीक जो है ना, आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती। वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है। मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे।
2: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन, और वही शब्द है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने व्यूइंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस आर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक काफी सारे तार अंदर भी खनके होंगे, है ना, सितार बजा होगा। लाइक टू इनवाइट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस।
4: जी, मेरा नाम कीर्ति बैद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों पर। तो आकाशवाणी का जो आर्काइव है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप बात करें।
2: सो मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट्स को देती हूँ, एंड कौन बात करना चाहेगा?
3: आकाशवाणी का बहुत ही समृद्ध आर्काइव है। रेडियो ने खासतौर पर शास्त्रीय संगीत को निष्ठा से संरक्षित किया है, और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी थाती है। ना सिर्फ आकाशवाणी की यह थाती है, ना सिर्फ यह प्रसार भारती की है, बल्कि यह भारत की थाती है।

0: सकती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट मिल जाएगी यहाँ। और जिन आवाजों की पहचान की हम बात करते हैं, उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आई थिंक वील क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, केजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
2: प्रसारण का बदलता क्षितिज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा, और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: So that was Blue and Sentimental with Count Basie on that gentle piano, Freddie Green on guitar, Walter Page on that double bass, and Joe Jones on drums. What makes this jazz standard so special is the chemistry between the musicians. No instrument is trying to outshine another. The piano quietly sets the mood, rhythm section gives the track its gentle groove, and Lester Young on that saxophone effortlessly just floats above it all, capturing that late night melancholy, and that's what makes this track oh so blue and oh so sentimental. Well, it's time for a short break, but we'll be back with all that jazz, only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: वेलकम बैक टू ऑल दैट जैज़। अप नेक्स्ट वी हैव अ पीस दैट फील्स लाइक अ क्वाइट कन्वर्सेशन यू हैव विद योरसेल्फ एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे, टेंडर, इंटिमेट एंड ब्यूटिफुली अंडरस्टेटेड। हियर्स It never entered my mind

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर प्रसारण का बदलता क्षितिज विषय पर परिचर्चा का प्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: विषय पर अपनी बात।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने

19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Commonwealth Games CWG have officially begun today in Glasgow, Scotland. The opening ceremony is underway. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Meanwhile, India have opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semifinals after receiving a bye. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।